0: परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपये तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेन देन और रुपये डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक की शुरुआती बढ़त खत्म हो गई और दोपहर के सत्र में वो गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय की सुई जब आगे बढ़ती है तो पीछे छूट जाती हैं कई यादें और साथ आ जाती हैं कई नई बातें। ऐसी ही कुछ पुरानी यादों और नई बातों को लेकर आज हम फिर आपके बीच हाजिर हुए हैं कार्यक्रम घर आंगन में। मैं हूँ श्रुति पुरी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 MHz पर। इंद्रप्रस्थ चैनल पर यह प्रसारण 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। और जो श्रोता डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं वे ये कार्यक्रम AIR न्यूज लाइव 24x7 यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वरैया कहा करते थे कि काम ही पूजा है। ये छोटी सी पंक्ति अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। उनका ये भी मानना था कि धन नहीं बल्कि चरित्र की ऊंचाई ही असली बड़प्पन है। और आज की तारीख भी कुछ ऐसी ही प्रेरणा लिए हुए है। 15 सितंबर का दिन दूरदर्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1959 में आज ही के दिन भारत में दूरदर्शन का प्रसारण आरंभ हुआ था और कुछ सालों बाद नियमित प्रसारण आरंभ हो गया। सोचिए उस दौर को जब घर में टेलीविजन होना किसी उत्सव से कम नहीं था। छत पे लगा एंटीना मोहल्ले की शान हुआ करता था और शाम होते ही पड़ोसी टीवी देखने इकट्ठा हो जाया करते थे। एक छोटे से डिब्बे ने धीरे धीरे पूरे देश को अपने भीतर समेट लिया था। और अब समय है आज के प्रश्न का। जैसा कि आजकल आप सभी देख रहे हैं, बुखार, खांसी, वायरल और डेंगू जैसी बीमारियां मौसम बदलने के साथ पनप रही हैं। ऐसे में स्वच्छता अपने घर में, परिवेश में, यानी हर स्तर पर जरूरी है। तो हमारा आज का सवाल है आपसे ये कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपका क्या कर्तव्य है और आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। हमें अपने जवाब हमारी ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com, ईमेल आईडी दोबारा सुनिए fmgoldga@gmail.com पर तुरंत लिख भेजिए और आनंद लीजिए अब इस गीत का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म रॉकी में। श्रोताओं, आज का दिन राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भारत रत्न डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वरैया की जयंती है। आपका जन्म साल 1861 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। उन्हें आधुनिक भारत के महान इंजीनियरों में गिना जाता है। उनका नाम आते ही मन में सबसे पहले कृष्णराज सागर बांध और मैसूर की जल प्रणाली प्रबंधन प्रणाली का ख्याल आता है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो योगदान दिया वो आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। और आज का दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी है। हर नागरिक की आवाज मायने रखती है और लोकतंत्र की मजबूती जन भागीदारी से ही बनती है। और साहित्य की दुनिया के लिए आज का दिन बेहद खास है। बांग्ला के महान उपन्यासकार शरणचंद चट्टोपाध्याय की आज जयंती है। उन्होंने देवदास और परिणीता जैसी रचनाएं दी जो आज भी पाठकों के दिल में बसती हैं। और हिंदी साहित्य जगत के जाने माने डॉक्टर राजकुमार वर्मा का जन्म भी आज ही के दिन साल 1905 में हुआ था। वे हिंदी नाट्य साहित्य के उन स्तंभों में गिने जाते हैं जिनकी एकांकी विधा पूरी दुनिया में एक पहचान बन गई। श्रोताओं, आज ऋषि पंचमी भी है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला ये व्रत सप्त ऋषियों को समर्पित है। ये गणेश चतुर्थी के अगले दिन और हड़ताल का तीज के बाद आता है। कई परिवारों में आज के दिन विशेष रूप से बिना हल जोते उगे अनाज का सेवन किया जाता है और घर की स्त्रियां सप्त ऋषियों का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखती हैं। तो देखा आपने कैसे एक ही तारीख में विज्ञान, लोकतंत्र, साहित्य और आस्था चारों एक साथ मिल जाते हैं और एक नए उत्सव को जन्म देते हैं। और हम उस उत्सव में आपके साथ हैं।

श्रोताओं, गणपति बाप्पा मोरिया की गूंज पूरे देश में एक जैसी है और गणपति बाप्पा घर घर में विराजित हो चुके हैं। आज दूसरा दिन है, पर आपको पता है कि हर राज्य में गणपति बाप्पा को मनाने का अपना ही अंदाज है। महाराष्ट्र में ये उत्सव अपनी पूरी भव्यता के साथ मनाया जाता है। घर घर और सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति स्थापना, ढोल ताशों की गूंज और भावभीनी विदाई के साथ। गोवा में इसे चवथ कहते हैं। वहाँ की खासियत है कि दूर रह रहे परिवारी जन भी विसर्जन से पहले घर लौट आते हैं। कर्नाटका में पहले गौरी पूजा होती है और फिर उसके बाद गणपति का स्वागत किया जाता है और साथ में कुडुबू जैसे पारंपरिक पकवानों का भोग भी लगता है। हैदराबाद के खैरताबाद गणेश अपनी विशाल प्रतिमा के लिए देश भर में मशहूर हैं। यह परंपरा एक छोटी सी 1 फुट की प्रतिमा से शुरू हुई थी, जो आज 60 फुट से भी ऊंची प्रतिमा तक पहुंच गई है। तमिलनाडु में इसे विनायक चतुर्थी या पल्लैयार चतुर्थी कहते हैं और कोझू कट्टई का भोग गणपति को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। कहीं ये 10 दिन का भव्य उत्सव होता है तो कहीं 12 दिन की सादगी भरी पूजा। पर बप्पा के लिए प्रेम हर जगह उतना ही गहरा है। यही तो भारत की खूबसूरती है। भाषा अलग, रीति अलग, पर आस्था एक। और जब विदाई की घड़ी आती है तो हर प्रदेश में एक ही पुकार सुनाई देती है, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ।

शंकर महादेवन को अभी आप सुन रहे थे फिल्म विरुद्ध में। और श्रोताओं, आपके बहुत सारे मेल हमारे पास आए हैं और अब हम उनको शामिल भी कर रहे हैं। सबसे पहला मेल हमारे पास आया है नवीन भाटिया जी का, मोतीनगर दिल्ली से। ये लिखते हैं कि कचरे वाली गाड़ी आती है डेली, उसी में कचरा डालते हैं और रोड पर लेकर नहीं जाते हैं। हमें चरणदास जी लिख रहे हैं, राजू अग्रवाल, केशव और प्रियांशी, ये सभी चौधरीवास हरियाणा से लिख रहे हैं कि नमस्कार। आपके नमस्कार कहते ही आवाज पहचान गया था। और साथ ही ये लिखते हैं कि हमारे घर में आगे एक बहुत बड़ा सा चौक है, हम रोजाना 30 मिनट वहां पर सफाई करके आते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं आप राजू अग्रवाल जी। अगर आप अपने घर के आगे के चौक की भी सफाई करते हैं तो आप अपने आसपास के परिवेश को भी स्वच्छ रखते हैं। और अफरोज शेख लिख रहे हैं कि घर का कचरा इकट्ठा ना होने दें, कपड़ों को भी इकट्ठा करके ना रखें क्योंकि इसमें भी मच्छर छुप जाते हैं। साफ सफाई का ख्याल रखना भी जरूरी है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो मैले कपड़े होते हैं या धुले हुए कपड़े भी अगर बाहर पड़े हों तो उसमें भी मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं। और ये योगांशु कुमार जी लिखते हैं, योगांशु कौशिक जी, तो ये लिखते हैं, नमस्कार मैम, मैं आपका कार्यक्रम

सुनता हूँ। और मेरे पिताजी 1 सितंबर 2001 से जब से रिटायर्ड हुए तब से एफएम गोल्ड सुनते हैं और आगे लिख रहे हैं कि मैं स्वच्छता रखने के लिए कभी कूड़ा करकट इधर उधर नहीं डालता हूँ, उसे डस्टबिन में ही डालता हूँ और बच्चों को भी यही सिखाता हूँ। और आज जब मैं अपने गाँव जाता हूँ तो वहाँ पर भी जाकर साफ सफाई का पूरा ख्याल रखता हूँ, लोगों को भी ये बताता हूँ कि साफ सफाई रखनी है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप योगांशु जी, हम सभी को इस मुतालिक ध्यान तो रखना ही चाहिए। अगला मेल हम ले रहे हैं सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो, सदा खाओ स्वस्थ हो जाओ, सादा खाओ स्वस्थ हो जाओ, मच्छर भगाओ बीमारी भगाओ। बहुत अच्छी बात लिखी है आपने। देखिए आपने इस अंदाज में उसको तुकबंदी में लिखा है कि कितनी भी हम कोशिश करें हमें मच्छर कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं, लेकिन उनको भगाना हमारा कर्तव्य है। और इन्होंने आगे लिखा है कि न रखो घर में खुला पानी, फिर नहीं चले मच्छर की मनमानी। बिल्कुल ठीक बात है और बहुत अच्छा लिखा है आपने सुदर्शन मुखी जी, बहुत अच्छा सुझाव दिया है। और हमें एक राजेश्वर, डॉक्टर राजेश्वर राव जी का भी मेल आया है और उन्होंने लिखा है कि जो गार्बेज है वो लोगों के द्वारा ही जनरेट किया जाता है और ये कॉरपोरेशन तो इसको हमेशा जो है समेटने का ही काम करती है, तो माय वेस्ट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात को लेकर इन्होंने जोर दिया है। और इन्होंने कहा है कि जो सेग्रीगेशन है हमें करना चाहिए गीले कूड़े का और सूखे कूड़े का, स्टोरेज नहीं करनी चाहिए, टाइमली उसका एक सही जगह पर उसका निस्तारण भी हमें करना चाहिए। बहुत अच्छी बात लिखी है आपने डॉक्टर राजेश्वर राव जी, आप भी हमें नियमित मेल करते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। गौरी शंकर जी का मेल हमें आया है और इन्होंने लिखा है राम राम बेटा, इस मौसम में मच्छरों की भरमार हो जाती है जिससे बीमारियां फैलती हैं, तो घर में पानी का ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए और बुखार में कई दिनों तक नहीं तो पीछा नहीं छोड़ता और ध्यान रखना जरूरी है। और ये गौरी शंकर जी नांगलोई से हमें लिख रहे थे। श्रोताओं बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही हैं और बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं और बच्चों को भी ये चीजें समझानी बहुत जरूरी हैं। और देखिए ना, अगर हम बचपन की बात कर रहे हैं तो मुझे आपको एक बार फिर से मैं चाहती हूँ आपको बचपन में ले चलूं, क्योंकि बचपन में जो हम रेल का सफर करते थे ना और उसमें अगर सीटी की आवाज सुनाई नहीं देती थी तो ऐसा लगता था कुछ अधूरा है। बचपन में स्टेशन पर खड़े होकर हम अक्सर उस सीटी की आवाज का इंतजार किया करते थे, मानो किसी जादुई पल की शुरुआत हो रही हो। और रेल की सीटी सुनते ही जैसे मन में एक अलग सा उत्साह भर जाता था। पर क्या आपको पता है कि सीटी सिर्फ इशारा भर नहीं बल्कि एक पूरी भाषा है। भारतीय रेल में हर सीटी का अपना एक तय संकेत कोड होता है। अगर चालक एक छोटी सीटी बजाता है तो इसका मतलब है कि उसे किसी और इंजन की मदद की जरूरत नहीं है, और अगर वो एक छोटी और एक लंबी सीटी बजाए तो इसका अर्थ है कि उसे पीछे लगे इंजन से सहायता चाहिए। जब ट्रेन खड़ी हो और चालक दो छोटी सीटी बजाए तो इसका मतलब है कि वो गार्ड से ट्रेन चलाने की अनुमति मांग रहा है। लगातार लंबी सीटी का मतलब है कि ट्रेन किसी स्टेशन को बिना रुके ही पार कर रही है ताकि प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग सतर्क हो जाएं। कुछ खास मौकों पर रुक रुक कर बजने वाली सीटी ये संकेत देती है कि आगे रास्ता साफ नहीं है या पटरी पर कोई रुकावट है। और अगर कभी कोई आपात स्थिति बने, जैसे किसी यात्री ने चेन खींच दी है, तो उसका भी अपना अलग सीटी संकेत होता है। यानी जो सीटी हमें बचपन में सिर्फ एक रोमांचक आवाज लगती थी, वो असल में चालक और गार्ड के बीच में एक पूरा संवाद है। रेल की पटरियों के किनारे लगे जो पीले बोर्ड होते हैं ना, उन पर जो W का निशान भी होता है, वो भी चालक को यही याद दिलाता है कि आगे सीटी बजानी है। वाकई ये जानकारी दिलचस्प है ना। अगली बार जब आप किसी स्टेशन पर खड़े होकर ये सीटी सुनेंगे तो शायद उसका मतलब समझने की कोशिश जरूर करेंगे।

0: Hannah.
1: दोस्त फिल्म में अभी आप किशोर कुमार को सुन रहे हैं।

श्रोताओं, छोटे बच्चों की दुनिया बड़ी अनोखी होती है। आपको बताएं कि वे बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं जो बड़े लोग बोलकर भी नहीं बता पाते, शब्दों में भी नहीं कह पाते। ऐसे में ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि उनके भीतर पनप रही इस कोमल समझ को सही दिशा दें, उन्हें सहानुभूति और संवेदनशीलता के रूप में पल्लवित होने दें। आज के दौर में बच्चों की परवरिश की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में कहीं संवेदनशीलता पीछे न छूट जाए। सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है घर का माहौल। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर घर में बड़े एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो बच्चा स्वाभाविक रूप से यही सीखता है। बच्चों को कहानियां सुनाना भी सहानुभूति बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। जब बच्चा किसी कहानी के पात्र के सुख दुख से जुड़ता है तो वो दूसरों की भावनाओं को समझना सीखता है। इसके अलावा पालतू जानवरों की देखभाल या पौधों को पानी देने जैसी छोटी जिम्मेदारियां भी बच्चों में देखभाल का भाव जगाती हैं। बच्चों से ये पूछना भी जरूरी है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, और अगर वे किसी दोस्त की तकलीफ की बात करें तो उन्हें ये सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि उस दोस्त की जगह पर अगर तुम होते तो कैसा महसूस करते। इससे बच्चों में दूसरों की स्थिति को समझने की क्षमता विकसित होती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों की भावनाओं को कभी छोटा या

नजरअंदाज न किया जाए। जब बच्चों को ये भरोसा होता है कि उनकी भावनाओं को समझा जाता है, तभी वो दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए भी खुला रहता है। सच में सहानुभूति कोई पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों से सीखी जाती है, और यही छोटे पल आगे चलकर एक संवेदनशील समाज की नींव बनते हैं।

आशा भोसले और गीता दत्त को अभी आप फिल्म सुजाता में सुन रहे थे। दोस्तों, आजकल तो हर किसी की कलाई पर या जेब में मोबाइल फोन में समय दिख जाता है और एक पल में पता चल जाता है कि घड़ी में कितने बजे हैं। पर जरा सोचिए उस दौर के बारे में जब ना कलाई पर घड़ी होती थी न जेब में मोबाइल फोन। तब समय का हिसाब रखना अपने आप में कला हुआ करती थी। हमारे बुजुर्ग सूरज की परछाई देखकर समय का अंदाजा लगा देते थे। धूप घड़ी यानी सन डायल का इस्तेमाल तो प्राचीन भारत में भी होता था। इसके अलावा गांवों में मुर्गे की बांग होने से सुबह का पता चलता था। समय के साथ इंसान ने इस अनुमान को यंत्रों में बदलना शुरू किया। यूरोप में 14वीं शताब्दी के आसपास पहली यांत्रिक घड़ी बननी शुरू हुई, जो साल 1656 में डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन ह्यूनसेंग ने पेंडुलम वाली घड़ी का आविष्कार किया, जो अपने समय की सबसे सटीक टाइम कीपिंग डिवाइस मानी जाती थी। यहीं से घड़ी के आधुनिक सफर की नींव पड़ी और फिर आया दीवार घड़ी या टेबल घड़ी का दौर। पेंडुलम वाली घड़ियां हर घर की शान हुआ करती थी। उनकी टिक टिक की आवाज मानो घर में जीवंत होने का प्रमाण होती थी। हर घंटे बजने वाला घंटा

मोहल्ले को यह याद दिलाता था कि समय क्या हुआ है। कलाई घड़ी का चलन आने के बाद तो ये एक स्टेटस सिंबल बन गई। शादी में दूल्हे को घड़ी देना एक परंपरा बन गई थी और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पहली घड़ी मिलना किसी बड़े उपहार से कम नहीं होता था। महापुरुषों के जीवन में भी घड़ी का अपना ही अलग महत्व रहा है। आज के दौर में घड़ी का रूप पूरी तरह से बदल चुका है। अब कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच सिर्फ समय नहीं बताती है बल्कि दिल की धड़कन नापती है, कदमों को गिनती है, फोन के संदेश तक दिखा देती है। फिर भी उन पुरानी घड़ियों के टिक टिक में जो सुकून था ना, वो आज भी बातों के मन में बसा हुआ है। ठीक कह रही हूँ ना? अपनी घड़ी देखिए और आंकिए वो किस जमाने की घड़ी है।

श्रोताओं, आज का ये सफर सच में बहुत रंगों से भरा रहा। बीता हुआ हर पल एक नई कहानी छोड़ जाता है और हर आवाज अपने भीतर कोई न कोई संदेश समेटे रहती है। बस जरूरत होती है उसे सुनने, उसे महसूस करने की। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सफर को यहीं विराम देते हैं और आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम घर आंगन। मैं थी श्रुति पुरी, इजाजत दीजिए। जल्द ही नई दोपहर, नई बात, एक नए विषय और एक नई सोच के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए

अपने अपनों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। नमस्कार और सुनते रहिए हमारा ये गीत अलका याग्निक, साधना सरगम और सपना मुखर्जी की आवाज में फिल्म त्रिदेव से।

Kangen. आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण के अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा उद्योगों के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में DRDO उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार अभूतपूर्व हैं।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों

0: हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं और भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपये तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेनदेन और रुपये डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी के उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 147 अंक गिरकर 74,635 पर और निफ्टी 74 अंक की गिरावट के साथ 23,324 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Defense Minister Rajnath Singh has said measures have been taken to ensure that India does not remain dependent on imports in the defense sector but moves towards self-reliance. Addressing the DRDO Industry Synergy Meet Vimarsh 2026 in the National Capital today, Mr. Singh said self-reliance should become a part of the nation's character and attitude.
0: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं,
3: द रिफॉर्म्स विटनेस्ड इन द डिफेंस सेक्टर ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स आर अनप्रेसिडेंटेड एंड सेवरल गेम चेंजिंग डिसीजंस हैव बीन टेकन। दिस इंक्लूड द पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आईडेक्स, अदिति एंड द डिसीजन टू एलोकेट 25% ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट टू द प्राइवेट सेक्टर।
0: और इसके परिणाम आप सबने महसूस भी किए।
2: The Defence Minister said the partnership between DRDO and industry can make India a global hub for defence manufacturing. Mr. Singh said over the years DRDO has demonstrated its capabilities in every field from missiles to radars, combat aircraft to submarines, electronic warfare system to artificial intelligence. Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav has underlined India's commitment to embedding circular economy principles into its sustainable development framework. Addressing the inaugural session of the 10th edition of the World Circular Economy Forum 2026 in Gandhinagar, Gujarat today, the minister stressed that India has modernized its deep-rooted ancient cultural practices of

0: reuse, repair and conservation values into contemporary policies under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
1: Circularity must extend it beyond waste management. It calls for embedding circular economy principles into the development and maintenance of sustainable and resilient infrastructure. For India, this is an important movement because our BRICS chairship has placed circular economy alongside sustainable lifestyles.
0: National Engineers Day is being celebrated today to honor the birth anniversary of Moksha Gundam Vishveshwaraya, one of India's greatest engineers. The day is celebrated to remember Vishveshwaraya's contributions and honor the role of engineers in the nation's growth. Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to M. Vishveshwaraya. In a social media post, Mr. Modi extended his greetings to engineers for their contributions to building, innovating and providing solutions for a better tomorrow.
2: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं।
3: मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
0: The BJP today criticized the absence of three Congress-ruled state chief ministers at the BRICS dinner held in Delhi last week. Addressing the media in New Delhi, BJP leader and MP Bansuri Swaraj said, "There may be political and ideological differences, but when it comes to India and the national interest, there should be no room for any kind of discord." She added that BRICS was India's platform and not of any political party. Iran has said it will not negotiate with the United States unless its conditions are met. Secretary of Iran's Supreme National Security Council, Mohsen Rezaei, made the remarks in a social media post today in response to U.S. President Donald Trump's remarks, in which Trump claimed that Tehran wanted to make a deal and that Washington could resume negotiations with it. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 this evening. India leads the three-match series 1-0 after a convincing 7-wicket win in the opening match on Sunday. Benchmark domestic equity indices were trading lower in the afternoon session today. The Sensex dropped 147 points to 74,635, while the Nifty dipped 74 points to 23,324 when reports last came in. On the sectoral front, capital goods, realty and industrials were the major laggards. Conversely, IT and FMCG were trading with gains. And with that, we end this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब समय हुआ है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आदाब, सत श्री अकाल और आप सभी को मेरा यानी कि रैना तंवर का प्यार भरा खुशनुमा नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
5: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
6: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
7: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट रैना तंवर। दोस्तों, हम चलेंगे मोहब्बत, शायरी, तहजीब और पुरानी हिंदी सिनेमा के उस दौर में जहाँ गीत सिर्फ गीत नहीं होते थे बल्कि दिल की आवाजों को बयां करते थे। वो ऐसा दौर, तो ऐसी फिल्म को लेकर आई हूँ आज मैं जहाँ साल 1967 की एक खूबसूरत फिल्म जिसको आपको गेस करना होगा। जी हाँ, इस फिल्म में है मीना कुमारी, प्रदीप कुमार और अशोक कुमार। संगीत है रोशन साहब का और गीत लिखे हैं साहिर लुधियानवी जी ने। और तो सोचिए, जब मीना कुमारी की अदाकारी हो, रोशन साहब का संगीत, साहिर साहब की शायरी एक साथ मिले तो कैसा जादू हो जाता है। आज अब सुनेंगे इस फिल्म के खूबसूरत गीत, उस फिल्म की थोड़ी सी संक्षिप्त कहानी और रोचक तथ्यों के साथ। और उससे पहले गणेश

चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक बधाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को, लेकिन उससे पहले आपको हमें मैसेज करके बताना होगा कि आज का हम किस फिल्म को लेकर आए हैं और किस फिल्म की हम बात कर रहे हैं। तो आप शुरू हो जाएं, मैसेज करें हमें फटाफट से इस मैसेज आईडी पर ipradiodelhi@gmail.com और बताइए हम किस फिल्म को लेकर आ गए हैं आज आपके बीच। तो सबसे पहले जो हमें मैसेज करेगा वो हमारे आज के इस कार्यक्रम का होगा फेवरेट श्रोता। जैसे कि रहना होती है तो कभी तो कुछ न कहना होता ही है, तो ये गेम शुरू हो चुका है इस गीत के साथ।

जी हाँ, हमने भी आपका इंतजार किया और आप सभी ने हमें बहुत बहुत मैसेज करके जवाब दिए। और सबसे पहले जिसने जवाब दिया, आज के जो हमारे फेवरेट श्रोता घोषित हुए हैं, वो हैं धर्मेंद्र छिप्पा जी राजस्थान से। उन्होंने भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिप्पा जी ने मैसेज किया और बिल्कुल सही जवाब दिया। आज हम जो फिल्म लेकर आए हैं वो है बहू बेगम। जी, 3 फरवरी 1967 में रिलीज हुई फिल्म बहू बेगम, और फिल्म का निर्देशन एम सादिक जी ने किया। कहानी लखनऊ के नवाबी माहौल और तहजीब के बीच बुनी हुई थी और ये एक मुस्लिम सोशल ड्रामा है जिसमें प्यार, गलतफहमी और रिश्तों की परीक्षा ली जाती है। कहानी कुछ ऐसी है कि फिल्म की जो नाजिमा जीनत जहां बेगम, जिसका किरदार निभाया है मीना जी ने, और जीनत को मोहब्बत है यूसुफ से, जिसका किरदार निभाया था प्रदीप कुमार जी ने, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जीनत की शादी नवाब सिकंदर मिर्जा साहब से तय कर दी जाती है, जिसका किरदार निभाया है

अशोक कुमार जी ने। तो दोस्तों कहानी पहुंची है उस मोड़ पर जहां पर जीनत की जिंदगी बदल जाती है। शादी का दिन आता है, जीनत का उम्मीद है कि उसकी शादी यूसुफ से होगी, लेकिन पता चलता है कि उनकी शादी नवाब सिकंदर मिर्जा से हो रही है। वो टूट जाती है, यूसुफ से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन हालात दोनों को नहीं मिला पाते। शादी हो जाती है मगर जीनत की डोली अपने पति के घर नहीं पहुंचती। परिवार की इज्जत बचाने के लिए ये बात छिपाई जाती है और दुल्हन घर नहीं आई। जीनत की जिंदगी अब एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गई जहां उसे अपने प्यार और समाज की उम्मीदों के बीच चुनाव करना है। इसी दर्द को महसूस करते हुए सुनते हैं ये लता जी की आवाज में खूबसूरत सा नगमा।

जी हाँ, सभी ने हमें जवाब दिए, बहुत ही अच्छा लगा सबके जवाब हमारे पास आ रहे। सबसे पहले जो हमें मैसेज किया था, वैसे उन्होंने किया था स्वर्ण सिंह ने, लेकिन सही जवाब जो दिया था वो धर्मेंद्र छिपा जी ने दिया था। और हमारे लिए सभी श्रोता बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही जरूरी हैं। आपके मैसेज आते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, कार्यक्रम करने का मन करता है, दिल करता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कार्यक्रम पेश करें। सुदर्शन शाह जी ने हमें मैसेज किया है, और उसी तरीके से हमें नितेश देवांगन जी ने, दुर्गा प्रसाद पराग पुना और कृष्णा देवांगन, संदीप मक्कर जी ने मैसेज किया है। और अब हम बढ़ते हैं, जीनत की हालत वो ऐसी हो जाती है कि वो अपने घर से दूर हो जाती है, उसे सहारा मिलता है नजीरन बाई के घर में, जिसका किरदार निभाया ललिता पवार जी ने। जीनत अब अपने पुराने जीवन से बहुत दूर है, उधर परिवार की इज्जत बचाने के लिए घर से वो दिखावा जारी है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जीनत के दिल में अपने प्यार की यादें हैं। और जब किसी के दिल में मोहब्बत बस जाए तो दूरी भी नहीं मिटा सकती। अब पेश है ये फिल्म बहू बेगम का नया खूबसूरत सा नगमा, क्योंकि कई बार कहते हैं हम इंसान दिल से क्या, मोहब्बत से क्या, हर जगह उस इंसान को, हर नजरें उसकी ओर ढूंढती हैं जिसे दिल में हम बसा लेते हैं। तो इस गीत को सुनकर आपको ये दिलकश नगमा जो हम मैं सुनाने जा रही हूँ।

जी हाँ, मोहम्मद रफी साहब और मन्ना डे की आवाज का ये खूबसूरत गीत जो हमने सुना, फिल्म के गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीत रोशन साहब का था। इस जोड़ी ने फिल्म के संगीत में मोहब्बत, दर्द और शायरी का खूबसूरत मेल किया। दोस्तों, पुराने हिंदी सिनेमा में सावन का भी एक अपना ही रंग होता है, क्यों? सही कहा ना, झूले, सहेलियां, हंसी, मेहंदी और गीत सब मिलकर एक खूबसूरत सा माहौल बना देते हैं। अभी हमारा सावन गया और किस किस ने ये गाना सुना ये जरूर बताइएगा। सावन की फुहार हो, आंगन में झूले पड़े और चारों तरफ गीतों की मिठास, ये जो गीत है ना, फिल्म के दर्द भरे माहौल के बीच एक अलग ही रंग भरता है। इस गीत को लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया। दोनों बहनों की आवाजें एक साथ सुनना हिंदी फिल्म संगीत का ना एक खास खूबसूरती का एक माहौल रहा, क्यों? सही कह रही हूं ना। इसी तरीके से प्यार भरे मैसेज हमें भेजते रहिए और हम सुनाएंगे आपको बहुत ही सुहावने, दिल को खुश करने वाले ये गीत।

झूले तो पड़ गए जी। जिन जिन श्रोताओं ने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं हूँ आज की आपकी होस्ट और लाइव इस कार्यक्रम की दोस्त कौन रैना तंवर जी। और आज हम इस खूबसूरत सफर में लेकर आए हैं फिल्म है हमारी जो कि 3 अप्रैल 1967 में रिलीज हुई थी, यादगार फिल्म बहू बेगम। बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं, श्रोता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ये जो श्रोता है खुद सुदर्शन मुखी जी हैं, अनीता है, सिमरन है, शांति जी शांतिनगर से सोनीपत से हमें मैसेज कर रहे हैं, संदीप मक्कर जी ने हमें मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गुरमीत जी जी हमें मैसेज करें साउथ एक्सटेंशन से दिल्ली से, और इसी तरीके से संदीप मक्कर जी, कमलकांत गुप्ता पीपरिया से हमें मैसेज कर रहे हैं, आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं कृपया करके हमें संदेश भेजें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। तो अब इसी तरीके से अपने रैना मैम थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी फागुराम यादव, ज्योति यादव और जस्वी यादव जी ने हमें मैसेज किया है, और हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आप ही का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। अब वापस चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर जी। ये है कहानी जीनत की, और जीनत की जिंदगी एक बड़ा सवाल पैदा कर देती है, वो क्या कि क्या उसे वो प्यार मिल पाएगा जी। वही नवाब सिकंदर मिर्जा के सामने भी एक सच्चाई आती है, और वो समझते हैं कि जीनत का दिल कहीं और है। तो दोस्तों यहीं से फिल्म का जो भावुक पक्ष है ना वो सामने आ जाता है, वो क्या, एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ है इज्जत और त्याग। फिल्म की कहानी में रिश्तों की ये परीक्षा एक ऐसी यादगार को ना पेशकश पैदा कर देती है कि मोहम्मद रफी की आवाज और मन्ना डे की आवाज का एक शानदार गीत आपको सुनाते हैं, और आपको दिल खुश कर देगा ये गीत।

गीत एक कवाली एक शैली का गीत है जो रोशन साहब की कवाली और शास्त्रीय रंग भर देती है संगीत में, क्यों सही कहा ना, उनके संगीत खूबी बहु बेगम में दिखाई देती है। तो दोस्तों अब हम लौटते हैं अंतिम दौर पर जहां भावुक चीज आता है, यूसुफ साहब वापस लौटता है, जीनत से मिलने की कोशिश करता है, दोनों के बीच प्यार बढ़ जाता है और जीनत और यूसुफ एक दूसरे से सच्चा प्यार करती है। इस कहानी में ऐसा त्याग और ये सब देखने को मिला, लेकिन बहु बेगम की कहानी आज भी पुराने सिनेमा के प्रेमियों के लिए आज भी यादगार बन चुकी है। तो जाते जाते हम एक गीत और सुनवा देंगे आप सभी को, लेकिन ये जो दर्द है ये हमेशा बना रहता है, वो दर्द नहीं रहना चाहिए। तो प्यार करते रहिए एक दूसरे से, और हमारे जब यदि मैं बता दूं कि हमारे जो श्रोता है नाराज ना हो कि समय की कमी के वजह से मैं शायद सबके नाम ना ले पाऊं, प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। फागुराम यादव जी, पीएस नामस्कर, आर कुमार जी, जगाराम राव साहू, जहरजिंदर छिंदा और सुदर्शन मुखी, राजकुमार, इतने सारे मैसेज हमें आए हैं, इतना सारा प्यार। हिरमानी वर्मा, संजय ढींगिया, अनिल मोहन जी, सुवर्ण सिंह जी, धर्मेंद्र झिप्पा जी, इशक मोहम्मद, दिग्दर्शन गौर, हरजिंदर सिंह जी और गुरमीत सिंह जी, इशक मोहम्मद, बाबू सर, यशवंत, दिग्दर्शन, सुधाकर, लालगिरी जी, हरजिंदर सिंह, बिट्टू, गंगा और हीरामणि, संजय, बहुत सारे मैसेज आए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। ज्यादा ज्यादा बस इतना कहूंगी कि खुश रहे, मुस्कुराते रहे और सुनते रहे आपका अपना कार्यक्रम। ये कौन सा ये गाना भी चला दूं साथ साथ, ताकि आप कहें कि जाते जाते मैं गाना नहीं सुना रही हूं, गाना भी सुना देते हैं और मिलते हैं अगले इसी 3 बजे, क्योंकि मैं मिलूंगी मैटिनी मेलेडी में। लेकिन जाते जाते ये कहूंगी एक अच्छा नागरिक

बने, एक अच्छे इंसान बने, दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट ताकि आपके दिल को मिले सुकून। एक अच्छे नागरिक बनने का वादा कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं 3 बजे आपके साथ मैटिनी मेलोडी में। रैना को दीजिए इजाजत। सुनते रहे आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे फिल्म एक ही फिल्म से कार्यक्रम, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला सुनो बुलेटिन दियां खास खबरां। चुगिरदा जंगलात ते जलवायु तब्दीली बारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गांधीनगर च वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं निरंतर विकास ढांचे च सर्कुलर इकोनॉमी दे सिद्धांत नूं

0: शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया उत्ते एक पोस्ट विच कहा कि एम विश्वेश्वरैया दा जिंदगी दे उच्चे म्यार अनुशासन नवीनता ते लोक सेवा दा कीता काम सदीवी मिसाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज खेतीबाड़ी नाल जुड़े लोक पुरब नुआ खाई मौके देशवासियां खासकर ओडिशा दे लोकां नूं वधाई दित्ती है। सोशल मीडिया ते एक पोस्ट विच राष्ट्रपति ने कहा कि नुआ खाई सिर्फ एक रवायती पुरब नहीं है, यह रल मिलकर भोजन करन दा भी मौका है। इस दौरान दोस्त अते परिवारक जी इकट्ठे हुंदे ने, यह पुरब समाजक अते परिवारक सांझ दा प्रतीक है। सरकार ने कहा है कि बैंक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई या रुपए द्वारा संचालित डेबिट कार्डा राही किए गए 2000 रुपए तक के लेन देन या भुगतानों उत्ते चार्ज नहीं लग सकते। एक सरकारी गजट नोटिफिकेशन मुताबिक कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली मुहैया करने नाल इन्हां तरीकों राही लेन देन करने वाले व्यक्तियों उत्ते सीधे या असिधे चार्ज नहीं लगा सकता। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन उत्ते चार्जा संबंधी नियमों नूं स्पष्ट करने लई भुगतान अते सैटलमेंट सिस्टम एक्ट तहत इन्हां बदलावां नूं नोटिफाई कीता है। ग्रामीण विकास विभाग पेंशन फंड रेगुलेटरी अते विकास अथार्टी ने पेंडू इलाकियां च रहण वाले लोकां लई समाजिक सुरक्षा मजबूत करन ते पेंशन दा दायरा वधाउण लई पेंशन सखियां राही एक समझौता पत्र ते दस्तखत कीते ने। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि इस समझौते तहत दीन दयाल अंतोदया योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन राही दूर दुराडे दे इलाकियां च पेंशन संबंधी सहायता देण लई जागरूकता मुहिमां चलाईयां जाणगियां। पुरुषों की क्रिकेट च भारत अज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम च अफगानिस्तान विरुद्ध दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच खेडेगा। यह मैच शामी 7:30 बजे शुरू होगा। एतवार को खेडे गए पहले मैच में 7 विकटां की शानदार जित तो बाद भारत 3 मैचों की लड़ी च 1-0 नाल अगे है। लड़ी का तीजा मैच वीरवार को इसे मैदान उत्ते खेडिया जाएगा। अखीर विच चोणवीं खबरां एक बार फिर सुन लो। चौगिरदा जंगलात अते जलवायु तब्दीली बारे केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादव ने गांधीनगर च वर्ल्ड सर्कुलर इकानमी फोरम 2026 सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं निरंतर विकास ढांचे च सर्कुलर इकानमी दे सिद्धांत नूं शामल करन प्रति भारत दी वचनबद्धता ते जोर दिता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा खोज अते विकास संगठन DRDO अते उद्योग विचकार भाईवाली भारत नूं रक्षा उत्पादन दा आलमी केंद्र बनाउण च अहम भूमिका निभा सकदी है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन अज अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है अते भारत अते अफगानिस्तान विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच अज शामी 7:30 बजे दिल्ली च खेडिया जाएगा। इहदे नाल ही साडा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक खबरां दा बुलेटिन शाम 6:20 बजे ते होएगा। नमस्कार,
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत दिफा के शोबे में खुद इनसारी को यकीनी बनाने के इकदाम कर रही है। माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत मुस्तकिल तरक्की के हिस्से के तौर पर सर्कुलर मईशत को फरोग देने का पाबंद है। आलमी सर्कुलर मईशत फोरम 2026 का गांधीनगर में आगाज हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को मुल्क की तामीर के कर्मयोगी के तौर पर सराहा है। अमरीकी अदालत ने गैर मुल्की तलबा और सहाफियों से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया के नए वीजा जाब्तों पर रोक लगा दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि DRDO और सनत के दरमियान शराकतदारी से भारत दिफाई साजो सामान तैयार करने वाले मुल्क के तौर पर एक आलमी मरकज बन सकता है। कौमी राजधानी में DRDO सनत तालमेल मीटिंग विमर्श 2026 से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि पिछले कई वर्षों में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, जंगजू तैयारों से लेकर आबदोजों तक, इलेक्ट्रॉनिक जंगी हथियारों से लेकर मसनूई जहानत तक हर मैदान में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। जनाब सिंह ने कहा कि DRDO आज दिफा के शोबे में तहकीक और तरक्की के लिए आला तरीन तंजीम है। अलबत्ता उन्होंने खासतौर पर कहा कि हुकूमत या DRDO की कोशिशें दिफा के शोबे में तहकीक और तरक्की के लिए काफी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह एक मुश्तरक कोशिश है और शराकतदारी विमर्श 2026 का कलीदी पैगाम है।

0: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
1: जनाब सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दिफा के शोबे में इसलाहत की गई हैं, जो बेमिसाल हैं और बहुत से अक्सर तब्दीली लाने वाले फैसले भी किए गए हैं। जनाब सिंह ने कहा कि खुद इनसारी का यह मतलब नहीं है कि मुल्क में महज कुछ कलपुर्जे, मिजाइल हथियार या प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए जाएं। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने सर्कुलर मईशत के उसूलों को भारत की तरक्की से मुतालिक फ्रेमवर्क में तब्दीली करने के अज़्म को दोहराया है। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि भारत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में अशिया को दोबारा इस्तेमाल करने, इनकी मरम्मत करने और तहफुजाती इकदार के गहरे कदीम सकाफती तौर तरीकों को जदीद शक्ल दी है। वह आज गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आलमी सर्कुलर मईशत फोरम WCEF 2026 के 10वें एडिशन के इफ्तिताही जलसे से खिताब कर रहे थे। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने फोरम का इफ्तिताह किया, जिसका इनेकाद भारत में पहली बार किया जा रहा है। 65 से ज्यादा मुल्कों के 2000 से ज्यादा मुतालिका फरीकैन इस फोरम में शिरकत कर रहे हैं। फोरम का मौजू है सर्कुलर मईशत, अवाम और खुशहाली के लिए यकसर तब्दीली। इस आलमी तकरीब का मुश्तरका इनेकाद माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली की वजारत, आलूदगी पर काबू पाने वाले मरकजी बोर्ड, फिनलैंड का इख्तराई फंड सित्रा और गुजरात सरकार कर रहे हैं। आज इंजीनियरों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल 15 सितंबर को मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। उनका शुमार भारत के अजीम इंजीनियरों में होता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एम विश्वेश्वरैया को खिराज अकीदत पेश किया। जनाब मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ख्यालात और उमंगों को ठोस उसूलियाबियों में बदलने में इंजीनियरों के रोल को उजागर किया। उन्होंने इंजीनियरों को मुल्क की तरक्की के समत काम करने वाला कर्मयोगी करार दिया।
2: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
1: पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
3: इंजीनियर्स भारत की यकसर तब्दीली, मुल्क के अहम बुनियादी ढांचे की तश्कील और मालूमात पर मबनी इख्तरा के पीछे एक बड़ी ताकत हैं। बांधों, सड़कों और इमारतों की तामीर से लेकर डिजिटल तब्दीली लाने तक वो एक जदीद मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा करते हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग में अपने कायदाना ताउन के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इख्तराई डिजाइन, दुरंदेश मनसूबा बंदी और काबिल अमल तरीकेकार फराहम करके मुल्क के बुनियादी ढांचे को यकसर तब्दील किया है। उन्होंने 1932 में कृष्ण राजा सागर डैम तामीर किया, जो मैसूर के चीफ इंजीनियर के तौर पर एशिया का सबसे बड़ा पानी का जखीरा है। उन्होंने 1908 के बाद उस्मान सागर और हिमायत सागर जैसे पानी के जखीरे भी डिजाइन किए। ऋषु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज रात पर मबनी समाजी त्यौहार नौखाई के मौके पर मुल्क और खासतौर पर ओडिशा के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि नौखाई महज एक रिवायती त्यौहार नहीं है, बल्कि ये समाजी तकरीबात और दोस्तों अहबाब के साथ जमा होकर समाजी और कुनबजाती मेल जोल की एक निशानी भी है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा है कि ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया तनाज़ात से दो चार है, नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग का कामयाब इनेकाद यकीनी तौर पर एक काबिल सताइश बात है। आलमी मामलात की भारतीय कौंसिल ICWA की सिल्वर जुबली के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने नई दिल्ली एलामिया को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किए जाने को एक बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि ICWA 2047 तक विकसित भारत का हदफ हासिल करने में एक अहम रोल अदा करेगा। भारत का सरकारी

0: ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन आज अपना 67वां यौम तासीस मना रहा है। इस सरकारी ब्रॉडकास्टर ने 1959 में तजर्बाती तौर पर ऑल इंडिया रेडियो के तहत टीवी नशरिया शुरू किया था। दहाइयों के अरसे में यह ब्रॉडकास्टर इत्तलात पहुंचाने, सकाफत को महफूज रखने और कौमी यकजहती का एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: 15 सितंबर 1959 को क्याम के बाद दूरदर्शन ने भारत के ब्रॉडकास्टिंग दौर की शुरुआत की। उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले नशरिये का इफ्तिताह किया। 1975 तक यह ऑल इंडिया रेडियो का हिस्सा रहा। यकम अप्रैल 1976 के दिन एक अहम लम्हा उस वक्त आया जब दूरदर्शन को अमली अख्तियार देकर ऑल इंडिया रेडियो से इलाहदा कर दिया गया। दिल्ली में एशियाई खेलों के इनेकाद के साथ 1982 में रंगीन टेलीविजन आने के बाद दूरदर्शन देखने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने आज यमुना नदी को साफ सुथरा करने और ताजा करने के किशाव कसीर मकसदी बांध प्रोजेक्ट से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे पर नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। इस मौके पर जल शक्ति के वजीर CR पाटिल, मरकजी दाखिले सेक्रेटरी, पानी के वसाइल के मरकजी सेक्रेटरी और मुतालिक रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। अमरीका के एक वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया के उस नए कानून पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें गैर मुल्की तलबा और साफियों के क्याम की मुद्दत पर सख्त पाबंदी लगाने की बात कही गई थी। इस फैसले से बैन अल-अक़वामी तलबा को राहत मिलने की तवक्को है। मैसाचुसेट्स के डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि इस पॉलिसी के नफाज से अमरीका की मईशत और आला तालीमी सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचने का इम्कान है। क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत दिफा के शोबे में खुद इंसारी को यकीनी बनाने के इकदाम कर रही है। माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत मुस्तकिल तरक्की के हिस्से के तौर पर सर्कुलर मईशत को फरोग देने का पाबंद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को मुल्क की तामीर के कर्मयोगी के तौर पर सराहा है। अमरीकी अदालत ने गैर मुल्की तलबा और सहाफियों से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया के नए वीजा जब्तों पर रोक लगा दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: work. Vida?
1: A U.S. federal judge has temporarily blocked a new Trump administration rule imposing stricter limits on the duration of stay for foreign students and journalists in the United States. The ruling is expected to provide relief to international students. The Trump administration had finalized the rule in July this year. It proposed a four-year limit on visas for foreign students and exchange visitors, while journalists would have been permitted to stay for a maximum of 240 days. However, journalists from China would have been subject to a 90-day limit. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Haryana, Punjab, Tamil Nadu, Delhi, Kutch, South Interior Karnataka, Puducherry, Kerala, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh and Meghalaya today. The weather agency has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over the Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Jammu and Kashmir and Ladakh, Jharkhand, Odisha and Rajasthan for the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Telangana, Uttar Pradesh and Uttarakhand till Thursday. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 this evening. India lead the three-match series 1-0 after a convincing 7-wicket win in the opening match on Sunday. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% lower in the afternoon session today. The Sensex dropped 337 points to 74,445, while the Nifty was down 130 points to 23,268 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Defence Minister Rajnath Singh says government taking steps to ensure self-reliance in defence sector. Chief Ministers of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan and Delhi signed Kishrao Multipurpose Dam Project Agreement for rejuvenation of Yamuna River. India committed to promoting circular economy as part of sustainable development, says Environment Minister Bhupendra Yadav. World Circular Economy Forum gets underway in Gandhinagar. Prime Minister Narendra Modi hails engineers as karma yogis of nation building. U.S. court blocks Trump administration's new visa rules for foreign students and journalists. IMD forecasts heavy rainfall over Punjab, Delhi, Kutch, Tamil Nadu, Assam and Meghalaya today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second T20 international in Delhi this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
3: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए, चाहे वह पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो या फिर डिफेंस

0: परसेंट डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
1: श्री सिंह ने डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का

0: हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट @AIR News हिंदी और पब्लिक पर @AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम हैं।
2: अंडर द EPR मैकेनिज्म,
3: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
4: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थितिकी, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब 1 महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स

0: ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉ एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
2: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूँ।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है।
4: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, महाभारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुच्चेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
5: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
6: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टीम बनाने का निर्देश दिया। गृहमंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
5: आकाशवाणी समाचार के लिए से
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445

0: पर आ गया जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्म योगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेशे खदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। आप सबका उमंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हमेशा की तरह पहले सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। लिखा है, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, उसमें समय, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। धन्यवाद आप दोनों का। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखा है, प्रिय उद्घोषक जी मन से नमस्कार। आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज्ञानवर्धक बात बताई। आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद। करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू ने लिखा है, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें भरपूर मनोरंजन तो होता ही है और इससे हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में अब आप सबका स्वागत है। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ लोक कथाएं। ये लोक कथाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर यदि आप कभी किसी पेड़ के पास से गुजरें तो आप उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझेंगे, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर उत्तराखंड के चिपकू आंदोलन और उससे जुड़ी गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा। इस पर हमारा कार्यक्रम भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे चिपकू आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव खेचड़ली की और एक ऐसी महिला की जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया। कहानी लगभग 300 साल पुरानी है, सन 1730 की बात है। राजस्थान की गर्म और रेगिस्तानी धरती, चारों ओर रेत और उस धरती पर जीवन का सहारा बने हुए थे खेजड़ी के पेड़। एक दिन गांव में कुछ लोग पहुंचे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उन्हें वहां के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव की एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ काटने वालों से कहा, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए श्रोताओं, क्या दृश्य रहा होगा। सामने कुल्हाड़ी लिए लोग और दूसरी

0: और एक निहत्थी महिला। पेड़ काटने वालों ने उसे धमकाया, लेकिन अमृता देवी पीछे नहीं हटी। उनकी तीन बेटियां भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गईं। और फिर जो हुआ वो भारतीय पर्यावरण इतिहास की अमर घटना बन गया। अमृता देवी का दृढ़ संकल्प देखकर गांव के लोग भी आने लगे और एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगे। किसी ने कहा, ये पेड़ हमारे पशुओं का चारा है। किसी ने कहा, ये हमारे जीवन का सहारा है। और किसी ने शायद ये महसूस किया कि पेड़ कटेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कट जाएगा। श्रोताओं, इसके बाद शुरू हुआ क्रूर संहार। इस बेहद दुखद आंदोलन में 363 विष्णुई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये समाचार महाराजा तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अंततः खेजड़ली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। साथियों, आज से लगभग 300 साल पहले, जब पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे, तब इन लोगों ने प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम आज कहते हैं पेड़ बचाओ, पानी बचाओ। सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये संदेश भरे पड़े हैं। बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होती हैं, उपदेश होते हैं, और जिसमें लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ। लेकिन अमृता देवी ने केवल कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया था। अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी में किए गए कार्य बोलते हैं। तो श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप किसी पेड़ की छाया में बैठें, उसके फल खाएं, उसकी ठंडी हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए राजस्थान की खेजड़ली गांव की उस महिला अमृता देवी बिश्नोई को जरूर याद कीजिएगा, जिनके लिए पेड़ केवल लकड़ी मात्र नहीं थे, लेकिन वो जीवन का आधार थे। आइए सोचें, पेड़ हमारी सांस हैं, हमारे लिए शीतल छाया हैं, वे हमारे जल और मिट्टी के रक्षक हैं, और सबसे बढ़कर वे आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं। तो आज हम उमंग कार्यक्रम में मन की उमंग से चलते चलते एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें। एक पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उसे बड़ा भी करेंगे और उसे बचाएंगे भी। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तर्ज पर आज हम उमंग कार्यक्रम की ओर से एक नया नारा देना चाहेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ पेड़ बचाओ। और शायद ही यही चिपको आंदोलन की मूल माता अमृता देवी बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृता देवी की कहानी पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन देने का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। बता दें, देश ने उनके अतुल्य बलिदान को नहीं भुलाया। आज भारत सरकार का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर वन और वन्य जीवन संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्यपुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है द क्रो। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में संदेश दिया गया है कि हम अपने मूल स्वरूप में ही अच्छे हैं, किसी और से हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
3: हेलो मैम।
1: हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम फाइन मैम,
4: हाउ आर यू मैम?
1: आई एम गुड, थैंक यू सो मच वान्या। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू। आर यू रेडी?
2: यस मैम।
1: ऑलराइट, you all know that pets are special members of our family, isn't it?
2: Yes,
3: pets are so lovely.
1: Right, Soham.
5: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
1: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
5: Ma'am, when I come back home,

0: Now, children, tell me, what did you learn from this poem?
1: Ma'am, all colors are beautiful.
0: Oh, yes. Now, let's have a little game. I'll name the bird and you will tell the color of that bird. Okay?
2: Okay, ma'am.
0: Good.
3: Yes, ma'am.
0: Good. The bird is parrot. Tell me the color.
2: Right.
0: Now, Soham will tell.
4: Green.
2: Yes, green.
0: Right. Now, listen to the sound of parrot. The next bird is sparrow. Now, tell me the color. Who will tell?
2: Me.
0: Navya, Vahanya, Soham.
5: Me.
0: Lavish.
6: Ma'am, brown.
0: You're right. Sparrow has mostly three colors. Brown, white and
2: black.
0: Right.
7: Crow is also black, ma'am.
0: Yes, black is a beautiful color. And now listen to how crow sounds. Now you all know about the sounds of birds.
2: Great. Yes, ma'am.
0: So children, did you like the poem?
2: Yes, ma'am.
8: We loved it.
0: Okay. And the song and the little game of birds?
2: Yes, ma'am.
0: Then let's clap for each other. Yay!
9: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सिस्टर निवेदिता। ये कार्यक्रम बंगाल की उल्लेखनीय शिक्षाविद भगिनी निवेदिता के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी देता है। कार्यक्रम बताता है कि किस प्रकार वे श्रीमती मार्गरेट नोबल के रूप में भारत में आईं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भगिनी निवेदिता कहलाईं।
10: उत्तरी कलकत्ता के बाग बाजार मोहल्ले में एक विद्यालय है। श्री रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल। वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह ये भी एक साधारण सा विद्यालय है, लेकिन कुछ अर्थों में ये बड़ा असाधारण भी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोगों के द्वारा बड़ी ही असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। सुनना चाहते हो इसकी कहानी?

0: उनके साथ एक अंग्रेज मेम साहब भी है।
1: अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा करके आया? जरा मेरी शॉल तो दे लो।
0: अच्छा बाबू।
1: और सुन
0: जी,
1: मालकिन से कह देना कि तैयार रहेंगी। हैं? भगिनी निवेदिता
0: हैं?
1: अरे वही अंग्रेज मेम साहब, शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहें।
0: क्या कह रहे हैं बाबू, मालकिन भला मेम साहब से कैसे बात करेंगी? वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है?
1: इसकी चिंता मत कर माधो, ये मेम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है।
0: अच्छा?
1: हाँ, बंगला बोल लेती है। बड़ी नेम धर्म वाली है, स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या है।
0: अच्छा?
1: अपना घर बार छोड़कर 100 समुंदर पार से यहाँ आई है, हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी, यहाँ कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी।
0: वो तो ठीक है, पर बाबू।
1: अरे दुष्ट, स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहाँ पर कर रहा है, जा भाग यहाँ से।
0: अच्छा,
1: पहले मैं उन्हें फीतर ले आऊं। आइए आइए स्वामी जी, भीतर आइए। धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हुआ।
2: अरे अरे, ये क्या करते हैं बोस बाबू? उठिए उठिए, माँ काली आपका कल्याण करे, इनसे मिलिए। यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट नोबल, जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी।
1: कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल।
3: धन्यवाद बोस बाबू, किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारें तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
1: यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूँगा। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। आप भी बैठिए सिस्टर।
3: धन्यवाद।
2: अब बताइए बोस बाबू
1: जी,
2: क्या सलाह है? इधर बाग बाजार में स्कूल खोलने पर यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या नहीं?
1: देखिए स्वामी जी, मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है। जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, वो भी समाज के डर से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।
3: अरे, अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है?
1: नुकसान तो है ही सिस्टर, पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियां पढ़ गईं तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी, अपना भला बुरा समझ सकेंगी, तब वे समाज से अपनी दुर्दशा का कारण पूछने लगेंगी, समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इनकार करने लगेंगी, तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा? समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना।
3: कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू, जब परिवार की बहू बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना।
1: देखिए सिस्टर, ये बात मैं समझता हूँ, कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है।
3: तब क्या ये स्कूल नहीं खुल सकेगा?
2: खुल सकेगा और खुलेगा। जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, माँ बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा, तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा।
3: लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी?
2: उतावली ना हो निवेदिता, हर काम का समय निश्चित होता है। हाँ तो बोस बाबू
1: जी,
2: यहीं बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी।
1: मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी, किंतु मेम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं, इस विषय में
2: वो व्यवस्था हो गई है। माँ शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी, गोपाल की माँ, उससे माँ ने कहा तो वो निवेदिता का खाना बनाने और घर द्वार संभालने के लिए राजी हो गई।
1: चलिए, तब तो ये चिंता भी दूर हुई, अब केवल आपके लिए छात्राओं की व्यवस्था कर ली है। वैसे एक छात्रा तो मेरे घर में भी है, मेरी छोटी लड़की चुन्नी। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले, पर उसकी माँ किसी भी तरह तैयार नहीं होती, कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा।
3: अरे वाह, ये तो उल्टी बात हुई। आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो। बोस बाबू, आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं,

0: मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूँ।
2: जाओ निवेदिता, शायद ये चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या हो।
3: इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोसपाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदामणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी। निवेदिता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना, सीना पिरोना, हिसाब किताब रखना, सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी। लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए।
0: गुड मॉर्निंग गर्ल्स।
4: गुड मॉर्निंग दीदी।
0: ये सुभाषिनी आज फिर नहीं आई, क्या बात है, बीमार तो नहीं पड़ गई? चारू, तुम गई थी उसके घर?
5: हाँ दीदी, आज मैं उसके घर गई थी। उसकी माँ कहने लगी, इश, ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा, वहाँ हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने?
0: फिर तुमने क्या कहा?
5: मैंने कहा कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं, और फिर ना जाने कैसे खेल खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी।
0: अच्छा ठीक है, तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चारू?
5: हाँ दीदी।
0: ये लो कागज और रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो। और चुन्नी, तुम मुझे कल वाली कविता सुनाओ तो।
6: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
5: दीदी, ये माशी माँ है, सुभाषिनी की माँ।
0: आइए आइए ना माँ, वहाँ द्वार पर ही क्यों खड़े हैं, भीतर आइए ना। जाते चारू, माशी माँ के लिए एक आसन तो ले आ।
5: अच्छा दीदी।
0: नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं, हम आपको ऐसे खड़े खड़े ही थोड़ी लौट जाने देंगे।
5: दीदी ये लीजिए आसन।
0: बैठिए ना माँ। सुभाषिनी कहती है आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुना कर जाइएगा।
7: किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा?
0: क्या कहती है माँ, आप गीता भागवत का पाठ करती हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता?
7: क्यों नहीं मिलता, जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए।
0: वही तो मैं भी कहती हूँ, शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है, शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। आप जो घर में सुभाषिनी को अल्पना बनाना सिखाती हैं, उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं, वो भी तो शिक्षा ही है ना माँ?
7: हाँ सो तो है।
0: मेरी लड़कियाँ जीवन के हर पक्ष से, हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं, मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है माँ। अच्छा आजकल सुभाषिनी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
7: तबीयत तो ठीक है। अच्छा मीम दीदी, अब मैं चलूंगी, कल से सुभाषिनी स्कूल आएगी और मैं देखूंगी आस पड़ोस की और लड़कियां भी राजी हो जाएं तो।
0: ये तो बड़ा उपकार होगा मुझ पर।
3: निवेदिता के सौम्य, सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनके विद्यालय की छात्राएं और आस पड़ोस की स्त्रियां बड़ी प्रभावित हुईं।

उन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा का जो नन्ना सा दीप जलाया था वो बढ़कर एक अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गया। पर निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी, वे चाहती थी कि भारत मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो। उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था, निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता था।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी सीआईटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग मीडियम वॉइस और एफएम चैनलों पर ये आकाशवाणी करगिल है। अब हम आकाशवाणी उर्दू सर्विस से हमारी नशरियात रिले करेंगे, रिले का इंतजार कीजिए।

से कुछ देर के बाद यानी 3:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत तो कुछ फिल्मी नगमे आप सुनेंगे। दोपहर 3:30 प्रोग्राम पेश किया जाएगा अदब नुमा। शाम 4 आप लुत्फानंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नगमों का यह प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशे की जाएंगी और शाम 5 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पसीर हो जाएगी।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप माजी दिल्ली से खबरें सुनिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत दिफा के शोबे में खुद इनसारी को यकीनी बनाने के इकदाम कर रही है। माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत मुस्तकिल तरक्की के हिस्से के तौर पर सर्कुलर मईशत को फरोग देने का पाबंद है। आलमी सर्कुलर मईशत फोरम 2026 का गांधीनगर में आगाज हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को मुल्क की तामीर के कर्मयोगी के तौर पर सराहा है। अमरीकी अदालत ने गैर मुल्की तलबा और सहाफियों से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया के नए वीजा जाब्तों पर रोक लगा दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दूसरे T20 बैन अवी मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि DRDO और सनत के दरमियान शराकत दारी से भारत दिफाई साजो सामान तैयार करने वाले मुल्क के तौर पर एक आलमी मरकज बन सकता है। कौमी राजधानी में DRDO सनत तालमेल मीटिंग विमर्श 2026 से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि पिछले कई वर्षों में DRDO ने मिजाइल से लेकर राडार तक, जंगजू तैयारों से लेकर आबदोजों तक, इलेक्ट्रॉनिक जंगी हथियारों से लेकर मसनूई जहानत तक हर मैदान में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। जनाब सिंह ने कहा कि DRDO आज दिफा के शोबे में तहकीक और तरक्की के लिए आला तरीन तंजीम है। अलबत्ता उन्होंने खासतौर पर कहा कि हुकूमत या DRDO की कोशिशें दिफा के शोबे में तहकीक और तरक्की के लिए काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक मुश्तरका कोशिश है और शराकत दारी विमर्श 2026 का कलीदी पैगाम है। जनाब सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दिफा के शोबे में इस्लाहात की गई हैं जो बेमिसाल हैं और बहुत से अक्सर तब्दीली लाने वाले फैसले भी किए गए हैं। माहौलियात जंगलात और आबो हवा के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने सर्कुलर मईशत के उसूलों को भारत की तरक्की से मुतालिक फ्रेमवर्क में तब्दीली करने के अज़्म को दोहराया है। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि भारत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में अशिया को दोबारा इस्तेमाल करने, उनकी मरम्मत करने और तहफुजाती इकदार के गहरे कदीम सकाफती तौर तरीकों को जदीद शक्ल दी है। वो आज गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आलमी सर्कुलर मईशत फोरम WCEF 2026 के 10वीं एडिशन के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने फोरम का इफ्तिताह किया, जिसका इनेकाद भारत में पहली बार किया जा रहा है। 65 से ज्यादा मुल्कों के 2000 से ज्यादा मुतल्लिका फरीकैन इस फोरम में शिरकत कर रहे हैं। फोरम का मौजू है सर्कुलर मईशत, अवाम और खुशहाली के लिए यकसर तब्दीली। आज इंजीनियरों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 15 सितंबर को मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। उनका शुमार भारत के अजीम इंजीनियरों में होता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एम विश्वेश्वरैया को खिराज अकीदत पेश किया। जनाब मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने ख्यालात और उमंगों को ठोस उसूलियाबियों में बदलने में इंजीनियरों के रोल को उजागर किया।

उन्होंने इंजीनियरों को मुल्क की तरक्की की समत काम करने वाला कर्मयोगी करार दिया। इंजीनियर्स भारत की अक्सर तब्दीली, मुल्क के अहम बुनियादी ढांचे की तश्कील और मालूमात पर मबनी इख्तरा के पीछे एक बड़ी ताकत हैं। बांधों, सड़कों और इमारतों की तामीर से लेकर डिजिटल तब्दीली लाने तक वो एक जदीद मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा करते हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग में अपने कायदाना तआवुन के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इख्तराई डिजाइन, दूरंदेश मनसूबाबंदी और काबिल अमल तरीक़ेकार फराहम करके मुल्क के बुनियादी ढांचे को यकसर तब्दील किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज रात पर मबनी समाजी त्यौहार नौखाई के मौके पर मुल्क और खासतौर पर उड़ीसा के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि नौखाई महज एक रिवायती त्यौहार नहीं है, बल्कि ये समाजी तकरीबात और दोस्त अहबाब के साथ जमा होकर समाजी और कुनबजाती मेलजोल की एक निशानी भी है। नायब सदर जमहूरिया सी वी राधाकृष्णन ने आज कहा है कि ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया तनाजात से दो चार है, नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग का कामयाब इनेकाद यकीनी तौर पर एक काबिल सताइश बात है। आलमी मामलात की भारतीय कौंसिल ICWA की सिल्वर जुबली के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने नई दिल्ली एलामिए को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किए जाने को एक बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि ICWA 2047 तक विकसित भारत का हदफ हासिल करने में एक अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि इस इदारे के पास मीरास है, इदारा जाति फ्रेमवर्क है और इल्मी रिवायात हैं। भारत का सरकारी ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन आज अपना 67वां यौम तासीस मना रहा है। इस सरकारी ब्रॉडकास्टर ने 1959 में तजर्बाती तौर पर ऑल इंडिया रेडियो के तहत टीवी नशरिया शुरू किया था। दहाइयों के अरसे में ये ब्रॉडकास्टर इत्तलात पहुंचाने, सकाफत को महफूज रखने और कौमी यकजहती का एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। इस प्लेटफॉर्म की रसाई सेटेलाइट और डायरेक्ट टू होम खिदमात के जरिए तकरीबन 100% आबादी तक है। 15 सितंबर 1959 को कयाम के बाद दूरदर्शन ने भारत के ब्रॉडकास्टिंग दौर की शुरुआत की। उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले नशरिया का इफ्तिताह किया। 1975 तक ये ऑल इंडिया रेडियो का हिस्सा रहा। 1 अप्रैल 1976 के दिन एक अहम लम्हा उस वक्त आया जब दूरदर्शन को अमली इख्तियार देकर ऑल इंडिया रेडियो से अलहदा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने आज जमुना नदी को साफ सुथरा करने और ताज़ा करने के किशाव कसीर मकसदी बांध प्रोजेक्ट से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे पर नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। इस मौके पर जल शक्ति के मरकजी वजीर CR पाटिल, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, आबी वसाइल के मरकजी सेक्रेटरी और मुतालिका रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका के एक वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया के उसने कानून पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें गैर मुल्की तलबा और सहाफियों के कयाम की मुद्दत पर सख्त बंदिशें लगाने की बात कही गई है। इस फैसले से बैन अल-अक़वामी तलबा को राहत मिलने की तवक्को है। मैसाचुसेट्स के डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि इस पॉलिसी के निफाज से अमरीका की मईशत और आला तालीमी सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचने का इम्कान है। ट्रंप इंतजामिया ने इस साल जुलाई में यह कानून तैयार किया था। इसमें गैर मुल्की तलबा और तबादले के तहत आने वाले अफराद के वीजों पर 4 साल की बंदिश, जबकि सहाफियों पर ज्यादा से ज्यादा 240 रोज की बंदिश की बात कही गई है। ताहम चीन के सहाफियों पर यह बंदिश 90 दिन की लगाई गई है, लेकिन अब इस मुअत्तल पॉलिसी के तहत तलबा और सहाफी अपने क्याम में तोसी के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ईरान के एक आला सिक्योरिटी एहलकार ने कहा है कि ईरान तब तक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर यह बात कही। कल अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि ईरान मुआहदा करना चाहता है और अमरीका ईरान के साथ फिर से बातचीत शुरू कर सकता है। इस बयान के जवाब में मोहसिन रजाई का यह बयान सामने आया है। इस साल 18 जून को अमेरिका और ईरान ने लबनान समेत सभी महाजों पर जंग रोकने के लिए एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए थे।

0: क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 बैन अल्कवामी मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। इतवार के रोज भारत ने इफ्तिताही मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी। शुरुआत में जल्दी विकेट गिरने के बावजूद संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने 32 बॉलों पर 82 रन की पारी खेली। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत दिफा के शोबे में खुद निसारी को यकीनी बनाने के इकदाम कर रही है। माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत मुस्तकिल तरक्की के हिस्से के तौर पर सर्कुलर मईशत को फरोग देने का पाबंद है। आलमी सर्कुलर मईशत फोरम 2026 का गांधीनगर में आगाज हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को मुल्क की तामीर के कर्मयोगी के तौर पर सराहा है। अमरीकी अदालत ने गैर मुल्की तलबा और साफियों से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया के नए वीजा जब्तों पर रोक लगा दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दूसरे T20 बैन अल्कवामी मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फेडरेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। मेरी पसंद ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। मेरी पसंद प्रोग्राम में खराज अकीदत उस अजीम शायर नगमा निगार को जिनका आज यौम पैदाइश है, यानी मोहम्मद हैदर खान, जिन्हें हम बेहतर नाम से जानते हैं, वो हैं खुमार बाराबंकी। 15 सितंबर सन 1919 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आप पैदा हुए। वालिद मोहतरम डॉक्टर गुलाम हैदर जाने माने शायर थे। शुरुआती दौर में उन्होंने शायरी में अपना तखल्लुस खुमार रखा। खुमार साहब ने तकरीबन 5 दहाइयों तक उर्दू शायरी और उर्दू अदब पर राज किया। उनके साथ की रवानगी और दर्द भरे अंदाज ने उन्हें न सिर्फ अपने मुल्क हिंदुस्तान बल्कि बर सगीर में मायनाज शायर बना दिया। और जहां तक उनकी शेर व शायरी की बात है, आतिशतर रक्से में और शबाब शबिताब ये उनके मजमू हैं जो मंजर आम पर आए। उन्हीं के लिखे चंद नगमे इस प्रोग्राम में हम आपकी नजर करना चाहेंगे। पहला नगमा है बारादरी फिल्म से।

0: इसने हमें के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फील्डेज पर आप हमारी नशियात सुन रहे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम अदब नुमा।
1: सामीन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। पेश खिदमत है प्रोग्राम अदब नुमा। आज के शुमार में सामीन हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर तरन्नुम रियाज से उनका कलाम, प्रोफेसर सुगरा मेहदी पेश करेंगे अफसाना और इसके अलावा एक नज़म भी शामिल प्रोग्राम रहेगी। सामीन, जहां तक अदब का ताल्लुक है और खासतौर पर शायरी का, तो शायरी ने तमाम सनाफ को अपने अंदर समोया है। जो शायरी के सनाफ हैं वो हमें उर्दू शायरी में तमाम तर मिल जाती हैं। जहां गजलों का एक अपना क्रेज है, अपनी एक महक है, वहीं उर्दू शायरी में नज्मों ने भी अपना एक मकाम बनाया है और इब्तदाई से लेकर मौजूदा दौर तक बहुत से शुरा ने खूबसूरत तरीन नज्में कही हैं। आज जिस शायरा को हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वह हैं मारूफ अफसाना निगार, ब्रॉडकास्टर और शायरा डॉक्टर तरन्नुम रियाज। आइए उनसे उनकी नज्में और गजलें सुनते हैं। पेश खिदमत है कलाम शायर।
2: सबसे पहले एक नज्म पेश खिदमत है, कमरों से किवाड़ों तक। न पूछूंगी मेरे हिस्से की शामें तुमने मैं खाने में क्यों छोड़ी, न पूछूंगी मेरे हिस्से की शामें तुमने मैं खाने में क्यों छोड़ी, हमेशा टूटने वाला कोई वादा न मांगूंगी, तुम्हारे सब बहानों पर मैं बोलूंगी न रूठूंगी। न पूछूंगी मेरे हिस्से की शामें तुमने मैं खाने में क्यों छोड़ी, हमेशा टूटने वाला कोई वादा न मांगूंगी, तुम्हारे सब बहानों पर मैं बोलूंगी न रूठूंगी, कि बच्चों की भी खातिर वक्त का कुछ जिक्र ही होगा, न छुट्टी तक कभी घर में बिताने को कहूंगी मैं, न दुनिया में रहूंगी मैं, कि बच्चों की भी खातिर वक्त का कुछ जिक्र ही होगा, न छुट्टी तक कभी घर में बिताने को कहूंगी मैं, न दुनिया में रहूंगी मैं तो घर तुमको पुकारेगा, न दुनिया में रहूंगी मैं तो घर तुमको पुकारेगा, पड़ेगा जल्द आ जाना ये बच्चे खुद में गुम होंगे, पड़ेगा जल्द आ जाना ये बच्चे खुद में गुम होंगे, तो तन्हाई की महफिल तुम भी अक्सर ही सजाओगे, जो कमरों से किवाड़ों तक चलोगे बेसबब यूं ही, तो सोचोगे कि मैं इतने बरस कितनी अकेली थी, ये बच्चे खुद में गुम होंगे तो तन्हाई की महफिल तुम भी अक्सर ही सजाओगे, जो कमरों से किवाड़ों तक चलोगे बेसबब यूं ही, तो सोचोगे कि मैं इतने बरस कितनी अकेली थी। और एक गजल पेश खिदमत है, दिले नाशाद सुकून का कोई सामा मांगे, दिले नाशाद सुकून का कोई सामा मांगे, चश्मे पुरनम तुझे कुछ रोज को मेहमा मांगे, चश्मे पुरनम तुझे कुछ रोज को मेहमा मांगे, ख्वाब में तुमने सवारी थी मेरे माथे पर, ख्वाब में तुमने सवारी थी मेरे माथे पर, लम्स हाथों का तेरे जुल्फ परेशां मांगे, ख्वाब में तुमने सवारी थी मेरे माथे पर, लम्स हाथों का तेरे जुल्फ परेशां मांगे, ये दुआ की रहे शादाब तुम्हारा गुलशन, ये दुआ की रहे शादाब तुम्हारा गुलशन, तुमने शायद मेरी खातिर है बेआबा मांगे, तुमने शायद मेरी खातिर है बेआबा मांगे, रायगान जाएगी मेहनत न कभी भी और हाँ, रायगान जाएगी मेहनत न कभी भी और हाँ, भीख मिलती नहीं संसार में जाना मांगे, भीख मिलती नहीं संसार में जाना मांगे, आरजूमंद निगाहों का ये दीवानापन, आरजूमंद निगाहों का ये दीवानापन, एक अनजान से चेहरे में शनासा मांगे, एक अनजान से चेहरे में शनासा मांगे। और एक गजल के कुछ अशार के, साथ उसका अजाब से लम्हे, साथ उसका अजाब से लम्हे, रोजे महशर हिसाब से लम्हे, साथ उसका अजाब।

से लम्हे रोजे महशर हिसाब से लम्हे तेरे दौलत कदे में रहते हैं मेरे खाना खराब से लम्हे तेरे दौलत कदे में रहते हैं मेरे खाना खराब से लम्हे क्यों से आगाज गुफ्तगु उनका क्यों से आगाज गुफ्तगु उनका और हमारे जवाब से लम्हे और हमारे जवाब से लम्हे जुल्म सहकर गुनाहगार हुए ये हमारे सवाब से लम्हे ये हमारे सवाब से लम्हे और सातें आ गई कि तेरा कलाम सातें आ गई कि तेरा कलाम आंसुओं से किताब से लम्हे आंसुओं से किताब से लम्हे साथ उसका अजाब से लम्हे रोजे महशर हिसाब से लम्हे तेरे दौलत कदे में रहते हैं मेरे खाना खराब से लम्हे क्यों से आगाज गुफ्तगु उनका और हमारे जवाब से लम्हे जुल्म सहकर गुनाहगार हुए ये हमारे सवाब से लम्हे सातें आगही की तेरा कलाम आयतों से किताब से लम्हे। ये एक नज्म पेश खिदमत है, इसका उन्वान है कहीं कोई नहीं। ये किसने बोई हैं चिंगारियां तेरी जमीनों में ये किसने बोई हैं चिंगारियां तेरी जमीनों में ये किसने आग सी सुलगाई है मासूम सीनों में कोई वीरान मौसम आ बसा बारह महीनों में कोई वीरान मौसम आ बसा बारह महीनों में कि जैसे हूँ न तासीरें ही अब झुकती जबीनों में किसी ने साहिबां बनकर जलाया मुर्गजारों को किसी ने बागबां बनकर उजाड़ा है बहारों। ये किसने बोई है चिंगारियां तेरी जमीनों में ये किसने आग सी सुलगाई है मासूम सीनों में कोई वीरान मौसम आ बसा बारह महीनों में कि जैसे हों न तासीरें ही अब झुकती जबीनों में किसी ने बागबां बनकर जलाया मुर्गजारों को किसी ने साएबां बनकर उजाड़ा है बहारों को। खिजाने देख डाला घर तेरे सब लाल हजारों का खिजाने देख डाला घर तेरे सब लाल हजारों का निशातो चश्मा शाही डल वुलर का शाल मारों का तेरे झरनों पहाड़ों नदियों का आबशारों का सुकून के हर खजाने पर है पहरा शाह मारों का सभी तेरी जमीन पर चाहते हैं आसमां अपना जड़ों को घुन लगाकर टहनियों पर आशियां अपना। खिजाने देख डाला घर तेरे सब लाल हजारों का निशातो चश्मा शाही डल वुलर का शाल मारों का तेरे झरनों पहाड़ों नदियों का आबशारों का सुकून के हर खजाने पर है पहरा शाह मारों का सभी तेरी जमीन पर चाहते हैं आसमां अपना जड़ों को घुन लगाकर टहनियों पर आशियां अपना। तेरी हर आबजू में सम्य कातिल क्यों मिलाया है तेरी हर आबजू में सम्य कातिल क्यों मिलाया है तेरे सब गुलशनों को किसने गोरिस्तां बनाया है ये बुलबुल के एक सुरीले गीत को किसने डराया है धनक रंग आसमां पर ये धुआं क्यों आन छाया है तेरी अजमत के कायल शाहों की हर याद रोती है हजारों साल की तारीख शर्मिंदा सी होती है। तेरी हर आबजू में सम्य कातिल क्यों मिलाया है तेरे सब गुलशनों को किसने गोरिस्तां बनाया है ये बुलबुल के सुरीले गीत को किसने डराया है धनक रंग आसमां पर ये धुआं क्यों आन छाया है तेरी अजमत के कायल शाहों की हर याद रोती है हजारों साल की तारीख शर्मिंदा सी होती है हजारों साल की तारीख शर्मिंदा सी होती है। खुदाई ने किसी इंसाफ में यूं देर की है क्यों तेरे सूफी बुजुर्गों ने खामोशी साध ली है क्यों खुदाई ने किसी इंसाफ में यूं देर की है क्यों तेरे सूफी बुजुर्गों ने खामोशी साध ली है क्यों खफा खुर्शीद तुझसे और रूठी चांदनी है क्यों तेरी दुश्मन बनी आखिर तेरी ये सादगी है क्यों तेरी चिड़ियों के नौहों में तरन्नुम कौन लाएगा तेरे मजरूह होंठों पर तबस्सुम कौन लाएगा फरिश्ता अमन का उजड़े घरों को कब बसाएगा जवां जानों के गम की झुर्रियों में मुस्कुराएगा।

0: फरिश्ता अमन का उजड़े घरों को कब बसाएगा, जवां जानों के गम की झुर्रियों में मुस्कुराएगा, कमारी बूढ़ियों की मांग में मोती सजाएगा, कहीं कोई नहीं है कौन आएगा, मुखालिफ साथों में तुझको हमदम कौन रखेगा, मेरी वादी तेरे जख्मों पे मरहम कौन रखेगा, मुखालिफ साथों में तुझको हमदम कौन रखेगा, मेरी वादी तेरे जख्मों पे मरहम कौन रखेगा। एक गजल पेश खिदमत है, न भूलेंगे हम वो मकान और रास्ता, न भूलेंगे हम वो मकान और रास्ता, गुलो लाला ओ जाफरान और रास्ता, गुलो लाला ओ जाफरान और रास्ता, मेरी राहते हैं तेरी मुस्कुराहट, मेरी राहते हैं तेरी मुस्कुराहट, ये अबरू नजर साएबान और रास्ता, ये अबरू नजर साएबान और रास्ता, वो मंजिल है तुम मुंतजिर हो गलत था, वो मंजिल है तुम मुंतजिर हो गलत था, अकेले हैं हम नीम जान और रास्ता, अकेले हैं हम नीम जान और रास्ता, मुसाफिर कड़ी है मगर हौसला दें, मुसाफिर कड़ी है मगर हौसला दें, ये रस्तों पे लिखे निशान और रास्ता, ये रस्तों पे लिखे निशान और रास्ता, मेरी मुफलिसी सोच में है कि मुझसे वो छीने मेरा आसमान और रास्ता, न भूलेंगे हम वो मकान और रास्ता, गुलो लाला ओ जाफरान और रास्ता, मेरी राहते हैं तेरी मुस्कुराहट, मेरी राहते हैं तेरी मुस्कुराहट, ये अबरू नजर साएबान और रास्ता, वो मंजिल है तुम मुंतजर हो गलत था, अकेले हैं हम नीम जान और रास्ता, मुसाफिर कड़ी है मगर हौसला दें, ये रस्तों पे लिखे निशान और रास्ता, मेरी मुफलिसी सोच में है कि मुझसे, मेरी मुफलिसी सोच में है कि मुझसे वो छीने मेरा आसमान और रास्ता। और आखिर में एक गजल पेश खिदमत है, कभी कभी हमको ये घर आंगन खलता है, कभी कभी हमको ये घर आंगन खलता है, खाली बैठे हूँ तो खालीपन खलता है, बारिश की दीवानी बादल की आशिक हूँ, बारिश की दीवानी बादल की आशिक हूँ, तेरे बिन लेकिन मुझको सावन खलता है, तेरे बिन लेकिन मुझको सावन खलता है, कभी कभी हमको ये घर आंगन खलता है, खाली बैठे हूँ तो खालीपन खलता है, मेरी वफा पर उसकी नीयत साफ नहीं है, मेरी वफा पर उसकी नीयत साफ नहीं है, जिस तरह धनवान को एक निर्धन खलता है, जिस तरह धनवान को एक निर्धन खलता है, कजरा पहनूं और न कोई गजरा बांधूं, कजरा पहनूं और न कोई गजरा बांधूं, तू जो नहीं तो मुझको ये तन मन खलता है।
1: डॉक्टर तरुण व्यास से भी आप उनका ये कलाम सुन रहे थे। उम्मीद है दोस्तों बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हुए होंगे, क्योंकि इस लफ्जों का ये ताना बाना यकीनन जहां हमारे एहसासात की तर्जुमानी करता है, वहीं हमें ये भी बताता है कि किस लफ्ज को किस तरह से बढ़ता जाए तो उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। अफसाने के खास मिजाज होता है। अफसाना जिंदगी के करीब तरीन की सिंफ है। वो किरदार या वो वाकयात तो हादसात जिन्हें तारीख फरामोश कर देती है या अपना दामन बचाकर चलती है, वो तमाम के तमाम हमें अदब में नुमाया तौर पर नजर आ जाते हैं। उर्दू अफसाने की खास बात यह है कि ये तमाम तरह के हादसात वाकयात और जज्बात की अक्कासी करता है। वो कई उर्दू की सिंफ नहीं थी, लेकिन इसे बहुत जल्द उर्दू में मकबूल आम सिंफ का दर्जा मिल गया। आइए अब सुनते हैं प्रोफेसर सोगरा मेहदी से उनका ये अफसाना।
2: अपना हर अंदाज आंखों को तरोताजा लगा, जिंदगी की ये यकसानियत ये तन्हाई कभी कभी बहुत दम घुटता है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी यूं गुजरेगी। कौन सोचता है, किसी को जिंदगी की मसरूफियात गहमा गहमी दिलचस्पियां कभी सोचने की मोहलत देती हैं। वक्त के साथ हम भी भागते रहते हैं, जब थकने लगते हैं रफ्तार में कमी आती है, रोल बदलते बदलते एक मुकाम पर आकर ठहर जाते हैं। उसने अखबार एक तरफ रखा और एक लंबी सी जवाही ली। फिर सोचा, टीवी खोले, याद आया कि वो अपनी अम्मा से कहा करती थी कि आप ये जवाहियां क्यों लेती हैं, ये जिंदगी से बेजारी की अलामत है। तो वो भी क्या अपनी जिंदगी से बेजार हो चुकी है, उसे भी जिंदगी बोझ लगने लगी है।

मगर उसने तो भरपूर जिंदगी गुजारी है और अब भी अपनी अम्मा से बेहतर जिंदगी गुजार रही है, मगर वो सब बातें करती है जो अम्मा किया करती थी। शायद खास उम्र पर पहुंचकर सभी करते हैं। अम्मा और उसकी जिंदगी में तो जमीन और आसमान का फर्क है। वो इतनी तन्हा तो नहीं जितनी अम्मा थी। उसका बेटा है, उसके साथ रहता है, वो अपने घर में है, बहू पोती पोता सभी उसका ख्याल रखते हैं। उसकी हैसियत हेड ऑफ द फैमिली की है, घर पर नेम प्लेट उसकी है। इक्का दुक्का ही सही, अब भी उसकी फैन में आ ही जाती है। अब भी शहर में होने वाली अदबी और समाजी तकरीबात में उसका नाम मेन लिस्ट में है। अम्मा जी पैरों में मालिश लगवाओगी? काम करने वाली माई उससे पूछ रही थी। वो चौंक पड़ी, क्यों तुम्हारा काम खत्म हो गया? घड़ी देखी तो 11 बज रहे थे। वो समझ गई कि महीने का आखिर है, बेचारी को पैसे की तंगी होगी। जब ये 2 घंटे घर का काम करके वो उससे मालिश के लिए पूछ रही है, जानती है कि वो मालिश करने के अलग से पैसे देती है। अपनी बहू की हिदायत के खिलाफ के अलग से पैसे देने की क्या जरूरत है, हम इतने पैसे तो देते हैं। जानती है कि वो जिनको इतने पैसे कहती है वो इस बिचारी के खानदान के लिए किस कदर नाकाफी हैं। इसीलिए वो किसी न किसी बहाने पैसे देती रहती है, कभी कोई फल दे देती है, कभी दूध, जिसे घर के लोग नौकरों की आदत बिगाड़ना कहते हैं। पोती भी जब माँ की हाँ में हाँ मिलाती है तो वो जरूर समझाने की कोशिश करती है, जिसे वो उफ ओह दादी अम्मा आप तो, इतने में फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। मैडम आपको हमारी कॉन्फ्रेंस का दावतनामा नहीं मिला? जी मिला तो था जी, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं अब कहाँ आती जाती हूँ। प्लीज मैडम अगर आप लंच पर तशरीफ ले आए, हमारे बहुत से मेहमान आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? उसने हैरत से कहा। जी प्लीज मैडम हम आपका इंतजार करेंगे। अच्छा कोशिश करती हूँ, हम आपको लेने आ जाएं? नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। वो रिसीवर रखकर सोचती रही कि कौन ऐसे लोग हैं जो उससे मिलना चाहते हैं। उसने तो आए दिन होने वाले अदबी जलसों सेमिनारों किताबों की रस्में इजरा की तकारीब में जाना छोड़ दिया है। उसे इन तकरीबों में जाने का कभी भी शौक नहीं रहा। अदब की सियासत से वो हमेशा घबराई। ग्रुपबाजी के इस खेल से उसे वहशत रही। उसने खुद को किसी ग्रुप किसी रुझान किसी तहरीक से वाबस्ता नहीं किया। उसने कभी ये पसंद नहीं किया कि अदब के तानाशाहों की बेसाखियों के सहारे चलकर वो अदम में अपना मुकाम बनाए, जो इन सो कॉल्ड अदीबों की जुम्बिश कलम से बनता है, इसलिए वो उनकी तहरीरों में जगह न पा सकी। उसका सरफिरापन उसकी जिंदगी की हर राह में आड़े आया। अब वो अदब में उसका मुकाम मुतय्यन हो, इनाम और इकराम और एजाजात की हविस को उसने दिल से निकाल दिया तो वो मुतमैन हो गई। लिखना उसकी जरूरत है, उसका शौक है, लिखकर अच्छा लगता है, दिल मुतमैन होता है। अगर उसकी तहरीरों में बाकी रहने की खसूसियात हैं तो बाकी रहेंगी, वरना उसके साथ वो भी खत्म हो जाएंगी। बस उसके पढ़ने वालों के खतूत ही उसके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे। अब तो इन मजबू में उसका दिल और भी घबराने लगा है। लड़ाई झगड़े काट छाट पैतरेबाजी एक दूसरे पे जाती हमले ये अजीब हैं, बिल्कुल ग्रेस नहीं है। मगर ये कौन लोग हैं जिन्हें इस सेमिनार में उसकी कमी महसूस हुई, ऐसी के बार बार इसरार कर रहे हैं। अब तो उसने तकरीबन लिखना ही छोड़ दिया है, उसकी किताबों के एडिशन भी खत्म हो गए हैं। कौन शाया करे, कौन इसके लिए भागदौड़ करे, अब तो न सेहत साथ देती है न कुछ लिखने को जी चाहता है। वो जिंदगी की शाम में अजीब तजर्बे से गुजर रही है। एक तरफ शदीद जहनी तन्हाई, दूसरी तरफ मुस्तकिल घर में रहने की वजह से तरह तरह की जिम्मेदारियां जिनमें वो जकड़ कर रह गई है। सब सुबह होते ही चले जाते हैं, बस वो रह जाती है इन उलझनों से जूझने। माई से काम करवाओ, अब प्लम्बर आएगा, अब कोई बिजली का मीटर देखने आएगा, बेटे और पोते के कोरियर से खत आएंगे, हर दम फोन की बजती घंटी, बैंक से लोन ले लो, कार पर डिस्काउंट मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड के ऑफर, उफ़ो आजिज आ जाती है तबीयत। अब वो कैसे जाए, घर बंद करे, फोन पर बेटे को इत्तला दे, छोटी पोती के लिए खाना रखे। फिर हमने ये कैसा जमाना पाया है, कैसी गैर महफूज जिंदगी है, दिन को भी घर खाली नहीं छोड़ सकते। फिर फोन बज रहा था। हाँ भाई आऊंगी, आ रही हूँ, उसने झुंझलाकर कहा, मगर अंदर से उसे अजीब खुशी का एहसास हो रहा था कि लोग उससे मिलना चाहते हैं। उसने पास वाले फ्लैट में जाकर जब ये कहा कि वो थोड़ी देर को बाहर जा रही है, उसकी पोती को वो अपने घर रखे और घर की चाबी भी ले लें, उसका खाना ये है, वो आपकी बच्ची के साथ ही खा लेगी, फिर मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी, उन्होंने कहा। हैरियत तो है, आप कहाँ जा रही हैं, तबीयत तो अच्छी है, वही गठिया की तकलीफ होगी या सांस फूल रही है, आप डॉक्टर के घर जा रही हैं या क्लिनिक, हम साथ चलें? नहीं नहीं मैं जरा वो आजकल जो अदबी कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, मैं उसमें जा रही हूँ। हाँ आप लिखती भी तो हैं। वो घर आकर तैयार हुई, बाहर निकलना न हो तो इंसान अच्छी तरह तैयार भी नहीं होता है। तैयार होकर बाहर निकली तो अजीब ताजगी का एहसास हुआ, याद आया कि एक जमाना था कि वो इन सड़कों पर बसों में कैसे मजे से घुमा करती, क्या जमाना था वो भी। अब

0: सामिन भी आप ये नज्म समाप्त फरमा रहे थे, कलाम था सलाम मछली शहरी का, आवाज जगजीत सिंह की थी। इसके साथ ही आज का अदबनुमा प्रोग्राम अब खत्म होता है। अपनी मेजबान शमीम उस्मानी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अदबनुमा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DT फील्ड डिश पर हम आपसे मुखा

तेरी तलाश में, इस फिल्म का तो गाना आप सुन रहे थे। मौसीकी थी सपन जगमोहन की। ओली जब सुनिए मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ फिल्म साथी का ये नगमा।

थे महेंद्र कपूर की आवाज में परिवार फिल्म का ये नगमा मौसीकी थी कल्याण जी आनंद जी की। और लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ ये नगमा। फिल्म है मेरे हमदम मेरे दोस्त, मौसीकी तरतीब दी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

के चक्कर रोज लगाना उसे सीखा है, तुम्हारे घर के चक्कर रोज लगाना उसे सीखा है।

0: सीना मान जाएगी। इस फिल्म का नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। नगमा निगार थे अख्तर रुमानी, मौसीकी कल्याण जी आनंद जी की थी। और ये है इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दुनिया फिल्म का नगमा। मौसीकी तरतीब दी है शंकर जयकिशन ने।
1: फलस

ईरान ने कहा है वो तब तक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती। अमेरिकी अदालत ने गैर मुल्की तलबा और सहाफियों से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया के नए वीजा जाब्तों पर रोक लगा दी है। वेल्स, स्कॉटलैंड और शमाली आयरलैंड ने अपने फैसले खुद करने के हक से मुतालिक माहदे पर दस्तखत किए हैं और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दूसरे T20 बैन अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। आज इंजीनियरों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 15 सितंबर को एम विश्वेश्वरैया के यम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। इनका शुमार भारत के अजीम इंजीनियरों में होता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एम विश्वेश्वरैया को खराज अकीदत पेश किया। जनाब मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने ख्यालात और उमंगों को ठोस उसूलियाबों में बदलने में इंजीनियरों के रोल को उजागर किया। उन्होंने इंजीनियरों को मुल्क की तरक्की की सिमत में काम करने वाला कर्मयोगी करार दिया। इंजीनियर्स भारत की यकसर तब्दीली, मुल्क के अहम बुनियादी ढांचे की तश्कील और मालूमात पर मबनी इख्तरा के पीछे एक बड़ी ताकत हैं। बांधों, सड़कों और इमारतों की तामीर से लेकर डिजिटल तब्दीली लाने तक वो एक जदीद मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा करते हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग में अपने कायदाना ताउन के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने इख्तराई डिजाइन, दूरंदेश मनसूबाबंदी और काबिल अमल तरीके कार फराहम करके मुल्क के बुनियादी ढांचे को यकसर तब्दील किया है। उन्होंने 1932 में कृष्ण राजा सागर डैम तामीर किया जो मैसूर के चीफ इंजीनियर के तौर पर एशिया का सबसे बड़ा पानी का जखीरा है। उन्होंने 1908 के बाद उस्मान सागर और हिमायत सागर जैसे पानी के जखीरे भी डिजाइन किए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि DRDO और सनत के दरमियान शराकतदारी से भारत दिफाई साजो सामान तैयार करने वाले मुल्क के तौर पर एक आलमी मरकज बन सकता है। कौमी राजधानी में DRDO सनत तालमेल मीटिंग विमर्श 2026 से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि पिछले कई वर्षों में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, जंगू तैयारों से लेकर आबदोज तक, इलेक्ट्रॉनिक जंगी हथियारों से लेकर मस्नूई जहानत तक हर मैदान में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। जनाब सिंह ने कहा कि DRDO आज दिफा के शोबे में तहकीक व तरक्की के लिए आला तरीन तंजीम है। अलबत्ता उन्होंने खासतौर पर कहा कि हुकूमत या DRDO की कोशिशें दिफा के शोबे में तहकीक व तरक्की के लिए काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक मुश्तरक कोशिश है और शराकतदारी विमर्श 2026 का कलीदी पैगाम है। जनाब सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दिफा के शोबे में इस्लाहात की गई हैं जो में मिसाल हैं और बहुत से यकसर तब्दीली लाने वाले फैसले भी किए गए हैं। जनाब सिंह ने कहा कि खुद निसारी का ये मतलब नहीं है कि मुल्क में महज कुछ कलपुर्जे, मिजाइल, हथियार या पायलट या प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए जाएं। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने सर्कुलर मईशत के उसूलों को भारत के तरक्की से मुतालिक फ्रेमवर्क में तब्दील करने के अज़्म को दोहराया है। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि भारत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में अशिया को दोबारा इस्तेमाल करने, इनकी मरम्मत करने और तहफ़ुज़ाती इकदार के गहरे कदीम सकाफती तौर तरीकों को जदीद शक्ल दी है। वो आज गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आलमी सर्कुलर मईशत फोरम WCF 2026 के 10वीं एडिशन के इफ्तिताही जलसे से खिताब कर रहे थे। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने फोरम का इफ्तिताह किया जिसका इनेकाद भारत में पहली बार किया जा रहा है। 65 से ज्यादा मुल्कों के 2000 से ज्यादा मुतलका फरीकैन इस फोरम में शिरकत कर रहे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर ने कहा है कि वियतनाम महासागर विजन और इसके भारत बहरुल काहल तनाजुर में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक अहम शराकतदार है। वजीर मौसूफ ने नई दिल्ली में तजारत, मईशत, साइंसी और तकनीकी कोऑपरेशन से मुतालिक भारत वियतनाम ज्वाइंट कमीशन के 19वीं इजलास की मुश्तरक तौर पर सदारत करते हुए ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वियतनाम आसियान के साथ इसके जाम स्ट्रेटजिक शराकतदारी के फ्रेमवर्क में एक अहम साझेदार है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान के एक आला सिक्योरिटी अहलकार ने कहा है कि ईरान तब तक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर यह बात कही। कल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि ईरान वायदा करना चाहता है और अमेरिका ईरान के साथ फिर से बातचीत शुरू कर सकता है। इस बयान

0: के जवाब में मोहसिन रजाई का यह बयान सामने आया है। इस साल 18 जून को अमरीका और ईरान ने लेबनान समेत सभी महाजों पर जंग रोकने के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए थे। इस मफाहमतनामे के तहत 60 दिन के अंदर अंदर बातचीत शुरू करने की बात की गई थी। यह मुद्दत 17 अगस्त को खत्म हो गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज ज़राअत पर अपने समाजी त्यौहार नौखाई के मौके पर मुल्क और ख़ासतौर पर उड़ीसा के आवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि नौखाई महज एक रवायती त्यौहार नहीं बल्कि समाजी तकरीबात और दोस्तों अहबाब के साथ जमा होकर समाजी और कुंबाजाती मेलजोल की एक निशानी भी है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा है कि ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया तनाजात से दोचार है, नई दिल्ली में ब्रिक्स सबरा मीटिंग का कामयाब इनेकाद यकीनी तौर पर एक काबिल सताइश बात है। आलमी मामलात की भारतीय कौंसिल ICWA की सिल्वर जुबली के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने नई दिल्ली एलामियों को मुतफ़िका तौर पर मंजूर किए जाने को एक बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि ICWA 2047 तक विकसित भारत का हदफ हासिल करने में एक अहम रोल अदा करेगा क्योंकि इस इदारे के पास मीरास है, इदारा जाती फ्रेमवर्क है और इल्मी रवायात हैं। भारत का सरकारी ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन आज अपना 67वां यम तासीस मना रहा है। इस सरकारी ब्रॉडकास्टर ने 1959 में तजुर्बाती तौर पर ऑल इंडिया रेडियो के तहत टीवी नशरिया शुरू किया था। दहाइयों के अरसे में यह ब्रॉडकास्टर इत्तलात पहुंचाने, सकाफत को महफूज रखने और कौमी यकजहती का एक अहम प्लेटफार्म बन गया है। इस प्लेटफार्म की रसाई सेटेलाइट और डायरेक्ट टू होम खिदमात के जरिए तकरीबन 100% आबादी तक है। अमेरिका के एक वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया के उस नए कानून पर आरजी पाबंदी आयद कर दी है जिसमें गैर मुल्की तलबा और सहाफियों के क्याम की मुद्दत पर सख्त बंदिशें लगाने की बात कही गई है। इस फैसले से बैन अक्वामी तलबा को राहत मिलने की तवक्को है। मसाचुसेट के डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि इस पॉलिसी के नफाज से अमरीका की मीशत और आला तालीमी सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचने का इम्कान है। ट्रंप इंतजामिया ने इस साल जुलाई में यह कानून तैयार किया था। इसमें गैर मुल्की तलबा और तबादले के तहत आने वाले अफराद के वीजों पर 4 साल की बंदिश जबकि सहाफियों पर ज्यादा से ज्यादा 240 रोज की बंदिश की बात कही गई है। वेल्स, स्कॉटलैंड और शमाली आयरलैंड के रहनुमाओं ने एक माहदे पर दस्तखत किए हैं जो बरतानिया की तकसीम का बायस बन सकता है। स्कॉटलैंड, वेल्स और शमाली आयरलैंड की अहम सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने कल वेल्स के दारुल हुकूमत कार्डिफ में होने वाली एक अहम मीटिंग में एक मुश्तरक माहदे पर दस्तखत किए जिसमें उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी के हक की बात दोहराई है। क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 बैन अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आखिर में खास खास खबरें एक बार और। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को मुल्क की तामीर के कर्मयोगी के तौर पर सराहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत दिफा के शोबे में खुद इन्हसारी को यकीनी बनाने के इकदाम कर रही है। ईरान ने कहा है वो तब तक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फेडेज पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: अभी तक आप हमारी नशरियात आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 684 किलो हर्ट्स, मीडियम वेव 1584 किलो हर्ट्स के अलावा FM चैनल 100.1 MHz पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। मीडियम वेव 3.9 किलो हर्ट्स, मीडियम वेव 9.9 किलो हर्ट्स दोनों FM चैनल 1.6 MHz का जो आकाशवाणी करगिल उस पर 1 मिनट 600 का

0: Ijigri mbo ngishan lamjaz la gyaga zhungi sona miskori lonkung si chintak zate Sanchez la pulinjik tangin.
1: Arararar, kya kar raha hai? Idhar, hum bol raha hai. Tere biju ka.
2: Utala bol raha hai?
1: Paksiyon se to hum khet ko bacha lete hai. Par in ghatak rasayanon se kaise bacha hai?
2: Matlab?
1: Dekh beta, tu jo ye andhadhun rasayan milata hai na, mitti ki sehat bigadne lagi hai. Aur jab maati hi kamzor pad jayegi, to upaj kaise sehatmand hogi? Haan? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर।

0: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
0: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: जुले बिस्किट कर ले
4: जुले कुंच शिले
3: दिली आता जिंग पे संस्का दे डिग्रीम संचेला फुलचे सिंह आता तुरसो जानतो संकल नंग संग मा जू जूस ते नंग दिली डिग्रीम स्कूल कुन निरा जूस सलना कसा जू
4: कसा कुंच शिले तिने दिली डिग्रीम बिना संग में संस्कुन लंग आता आश के तिने चेस्ता लुली करने का जुगा यों गोस पे लिन ते वेका तिने आता तम जी जिक संचेला फुलचे सुन कुंग लजू
3: कसा जू तिने दिली आता टिबटी लने डिग्रीम बो प्रोफेसर सबिया असमत कुंग आता केवी केस्टोना सिका सेंटेज जुक सा तेनो खोतांग यंपु आता टिबटी लने डिग्रीम जिको तेनो तेवो आता संचेला
4: प्रोफेसर सबिया असमत तंगयांपो तेनेंगाता पोषण मेका ई टीवर टिलन बंग संचला पुलतंगना मिगे सजु
3: कसजु
4: तेने खों टीवर जातकन सुनांग चुगोंलेजु
5: डिग्रीम संकल लंजस ला जुली संकल लंजस तेने दिलिंग डिग्री मिनांगा प्रोफेसर सबिया असमत तेने निरांग किबिकिले यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख सिनांगा तेने होम साइंस तेने साइंटिस्ट चुला तेने चला दुनि तानो संकल लंजस समा तु जुस नतेंगाता ई सेप्टेंबर रिल जावाबो तेनेगाता ग्यारगांग पेनांगा पोषण माह जुस्तिया तेनेगाता ता ཁྱི ཕྱད མ ཁ ཚན ནོག དེ ན བ ཤེད ས ལ དེ

0: और लाभान्वित हुए हैं। पीएम किसान योजना में सभी भूजोतधारी किसान परिवारों को 2000 रुपए की 3 समान किश्तों के माध्यम से कुल 6000 रुपए सालाना दिए जाते हैं।
1: किसान सम्मान निधि से हमें काफी फायदे हुए, क्योंकि हमें समय पे हमने अपने खेतों की जोताई वगैरह करी, हल वगैरह करे, फसल वगैरह बीज वगैरह बोए हमने, इससे हमें काफी फायदे हुए।
0: इस योजना को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए समय समय पर इसमें कई बदलाव किए गए हैं। लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया, EKYC, लैंड रिकॉर्ड लिंकेज, फेस ऑथेंटिकेशन इसी की कड़ी है। किसान भाई बहन पीएम किसान मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से इस योजना की जानकारी ले सकते हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन यानी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और नो योर स्टेटस से अपना स्टेटस देख सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और CSC के माध्यम से पीएम किसान लाभार्थियों के आधार से जुड़े खाते खोले गए हैं। साथ ही एक चैट बॉट बनाया गया है जिसमें किसान अपनी भाषा में पीएम किसान से संबंधित समस्या का समाधान पा सकते हैं। आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प को पूरा करते हुए भारत सरकार ने किसानों को जानकारी और योजनाओं का लाभ देने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रॉप सर्वे, कृषि मैपर और वेदर इंफॉर्मेशन डेटा नेटवर्क सिस्टम यानी विंड्स के जैसे कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जो किसानों के जीवन को नई दिशा दे रहे हैं।
2: मैंने अपने आधार के माध्यम से योजना के पंजीकरण करवाया था, तब से मुझे हर किस्त मिल रही है और मैं अपने किसानों के काम को और बेहतरीन बना पा रहा हूँ और मेरा परिवार खुश है।
0: विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त का भुगतान 100% आधार आधारित पेमेंट माध्यमों से ही हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान की 14वीं किश्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया है। आज किसान भाई बहन आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बन खुशहाली की राह पर अग्रसर हैं। 9 वर्षों में कृषि क्षेत्र में बनाए नए कीर्तिमान, उन्नति और समृद्धि के पथ पर हैं किसान।
3: इदिगिंबो निजन लंगेजला गेवल जुई सोना मिस्कोरे लोनकुंसी चिंदाजाते संचेसला पुतेन पिन।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी।
5: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
4: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
5: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहां हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
4: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों

के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत ने एचआईवी एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं और इन परीक्षाओं में चयनित कर्मचारियों को संबंधित पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई, जिनकी नियुक्तियां सरकारी अधिसूचना से प्रभावित हुई थीं। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: काफी मतलब बेकार छन खो से टीवी तसे खो या न्यूज पर पता सो मतलब दस जना दस आबादी दिन अमेद पना मी न्यूज काफी आज गवर्नमेंट की सराहना मजदी जो शीख फैसे दरे दंधनी जमाने नु दूरदर्शन मतलब मी मन कम इसलिए लेकिन चाम चिंग मतलब गेला पोरम फ्रूस है पोरम मन परीक्षा पे चर्चा जर नंग मतलब का जो पोरम जो नंग अति मतलब प्राइम मिनिस्टर पोरम जो ना गांव में दूरदर्शन के टेलीकास्ट से काफी मतलब नॉलेज फुलना थोपचे
1: दुखाजो बख्शीसनी दाचा मुलना दरे यरेस दूरदर्शन निकना आती फ्रबस भी सुनला जरे यंग आती सगेत पान ला हजू की किसान नुन ला ले कि ना दे आना चैनल आठ चो से दो खुआ दे फिला गचू का तपचिन सगेत गचू तपचिन दोनों सारे स्कोर लाइ दो पास दून के नफन खेले मेरे समचिक सही शेषित बख्शीस
0: दूरदर्शन चौक बेच ना सिर्फ चैनल जीता दूरदर्शन जरे दर्शन कुल्ला कुल्ला दूरदर्शन तक दर्शन डीडी किसान खुरा हर मतलब चामचिक आती स्टेट होते अलग अलग खुंती लंग्वेज
1: चैनल
0: मतलब काफी में मतलब हवा हुआ ना खुंती ना दुख से खुरी टीवी मतलब की मन मन पसंद पोनम पोस्ट सजा सो खुंदिस का देनो दी दी एनी छोटू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी जबरदस्त है दसन दसन अतिस का देनो करगिल मतलब करगिल ने गति डेली दूरदर्शन डीडी कश्ते का जाता गति प्रोग्राम न्यूज हो 6:45 का डेली दोनों में 2:30 बजे का मतलब देनो काफी दरे रिसेंटली मतलब हर डिस्ट्रिक्ट यानो दूरदर्शन हर डिस्ट्रिक्ट स्टिंगर न्यूज लेंस काफी रिसेंटली एग्जाम्स हो से देन मतलब ये दराज जाना दूरदर्शन पर नमस्कार ला श्याम हर डिस्ट्रिक्ट यानो दूरदर्शन न्यूज जो मतलब काफी अपॉर्चुनिटी था मतलब बेरोजगार फुसा देव से लाजबा काफी मतलब छकाने फुसा काफी मतलब गवर्नमेंट युवा बिंदु
1: निजान तो हसा दरे अतामानी का दू छो खाक जिल्दा निंदु खासर गातिस ना गातिस मतलब टीवी जक पामे अगर कतो गातिस ना टीवी जक जा गाउ गातिस बाकी चैनल सब छमी गाता जरूरत में अगर कतो टीवी तासे दूरदर्शन का दूरदर्शन देखा गातिस खुद तासे जक न कतो फ्रून ला गातिस मोबाइल मक्कल न खोस खुद बखुद तचिन हजार में न कतो गातिस दक्सा फ्रबस बीस गांव में लगा मोबाइल करना दोस्त गाता अच्छी बता खुंगार सो से चिलते देखे ना चाम चिखुआ उस दो खड़े हों दुखा सर
0: दस एरियाज फार फ्लंग एरियाज मतलब गायन टावर मेत गायन गायन रोड मेत दे दूरदर्शन लिप से मतलब काफी फ्रुक यो न खा तो खो टीवी पर आना खो पेने फोज मेत मतलब सब्सिडी का दू गवर्नमेंट एक बार ट्रांसमिट डी डी डायरेक्ट जरे मतलब मतलब गायन मतलब कनेक्टिविटी में चंग में देना दूरदर्शन थोपचिन और दूरदर्शन का मतलब 160 चैनल जो गायन एना एजुकेशन चैनल लियो फ्रू साइफे चैनल लियो मतलब छिमी साइफे चैनल लियो किसान साइफे चैनल हर तबके फिया मतलब दूरदर्शन काफी नहीं हल बस
1: अगर कतो दूरदर्शन ना मन सी नाता मन टीवी का खन चीत मेजे था दुखसा नी दुखसा सी नांग प्यानो अगर कतो टीवी खो से जग ना कतो फिर बस भी मन मोबाइल तो ए वो दो बो जेरे जस्टे गाँव में दुगे तमान इन ना कतो अगर कतो मोबाइल पर मलता अगर ना शख्स क्यों थे ना टीवी फुटता से खबर चेंगे ना कतो फ्रो निकाना देखा दे असर से छजा दुपा सर
0: दूरदर्शन न्यूज कत ना फजूली न्यूज सामने गाँव मतलब गोस्पी न्यूज हो मतलब फूनी फे मतलब मतलब जो बखान साफ हो दो फेडरेटी न्यूज हो बाकी फजूल बाकी सोशल मीडिया तो फेक न्यूज सामने चाह हम दे फे हर खमा खमे कम से कम डी डायरेक्ट जाना हन खो पेने पहुंचा मत या तो मतलब ना दुख से हनोज नंबर दुख से मतलब जान फैमिली ड्रामा हो मत दूर से तो मती फंतोष काफी मी साफ है काफी फंतोष छे मतलब गरी समय चाँस गला दो
1: मगर गातिस बा में था सरगा नाच ये ना कतो या गातिस टीवी जरे गातिस मन मालता खबर छी ना गातिस मन मालता ना कतो फ्रो ना देगे ना ता लेकिन असर फोकचा दुख पा सर जैसे बना खो गातिस मोबाइल लाते दुख पाना खो सा मोबाइल लाते एक अतर सो से गाता फाक पे अनु गाता पता छमा में खो मोबाइल लेकर ना जैसे बना मोबाइल लेकर गाता फेक मांगमो रियल पुका में ओजे था सर गचुक न्यू छी ना गाता ओता ना सोशल मीडिया का ता ना सगस मी सगस दे मजर खन ची बसे यौन दुगा सही गा इन गलत पोगा इन जरे अर्देमेक बसे माना दोनी करना थोमा मिंदु मगर गता मेमा सुन लशेस मेगा कना गता फन खे यौन दु या गा कना गता दुखर छी यौन दुख ध्यान चुख लगाता सर रेडियो यूथ सर प्रसार भारती नंगोती गता रेडियो यूथ निगाते जक्सा ना उन्हें हस्ता ना कतो रेडियो एक जरे गा मना रेडियो एक मेज दिन दुखा सर रेडियो गता चंग फन खे चंग मना फन खे योद ना दो चंग दुखर छी गता मन में चाहे बना कतो गाते जन ची स्कूल इनना या ना अच्छी नमून इन्ना अमान इन्ना जन ची स्कूल इनना खुरा एक फुट ना से जग ना चांग प्रॉब्लम ची मेट देना तो फिर बस भी से फिलहाल फ्रूनी प्रोग्राम यो یوں مدیانہ سگیت پروگرام یوں مدیا دیا نوک اچھی نمونی پروگرام یوں مد دونی کنا آتا فن

आकाशवाणी करगिल मैडम मयुका दिरिंगे फेस्पा फीचर पुरीगी लोरग्यूस सिरपास नंगा बिनु खान पुरी करगिल ना संसमसी इंगोसला छसकानु खानी स्कटना शेसरिक्स यंग पुरीगी रिक्सजुमा रकाखन छर्मासुनचेन गंगमा ngachi juna salam pu frotmo chen sosik yong dering ates yantis nangan sakpa iftihar husaini zibrikhan puri gi loryusi khatus beka fespa feature chik chochupe phraluk sbet yang singir de ngajat yantis alzab ingresis phrochupe ngachi fespa feature dering e chirpwa singing nar kase singin sotsalo rinchen

0: ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च कर रहा है 1 अगस्त से। क्या आप इसमें भाग लेना चाहते हैं? आइए सिर्फ 1 मिनट में जानते हैं कैसे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर से वेव्स ओटीटी ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब अपने मोबाइल नंबर या उपलब्ध किसी भी साइन इन विकल्प से रजिस्टर करें और लॉग इन करें। इसके बाद माई वेव्स सेक्शन में जाएं और अपना क्रिएटर प्रोफाइल तैयार करें। अब अवेलेबल प्रोग्राम में से जेम्स ऑफ इंडिया चुनें। अपना ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट अपलोड करें, सभी आवश्यक डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक करें। एंड योर एंट्री सबमिटेड सक्सेसफुली। जेम्स ऑफ इंडिया, आपकी जिले की कहानी, पूरे भारत की पहचान।
1: मीडियम वेव्स ने एफएम चैनल का जो आकाशवाणी करगिल वक्फ खबर आकाशवाणी श्रीनगर के ना उर्जन खबर तबसरा रिले रिले लागर बाजार।

0: आदाब। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क को दिफाई शोबे में खुद इन्हिसार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी को बरोएकार लाने पर दिया जोर। आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है इंजीनियरों का कौमी दिन। कौम की तरक्की और बुनियादी ढांचे को तकवियत बख्शने में इंजीनियरों का रोल किया गया उजागर। नए मुंतखब हुए JKAS अफसरों को लगन और तनदेही के साथ अवामी खिदमात अंजाम देने की वजीर आला उमर अब्दुल्ला की ताकीद। और पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन आज मना रहा है अपना 67वां योम तासीस। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दिफाई सेक्टर में खुद इन्हिसारी दिफाई फोर्सेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इदारों और सनतों के मौसर तालमेल से ही हासिल की जा सकती है। उन्होंने मुल्क के दिफाई निजाम को मजीद मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी को बरोएकार लाने की जरूरत पर जोर दिया। नई दिल्ली में आज DRDO इंडस्ट्री सिनर्जी मीट विमर्श 2026 से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि DRDO ने हर एक शोबे में अपनी बेमिसाल सलाहियतों का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि दिफाई शोबे में पिछले चंद वर्षों के दौरान नुमाया इस्लाहत लाई गई हैं।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, IDEX हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: आज पूरे मुल्क में नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन भारत के मारूफ इंजीनियर और भारत रत्न मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के तौर पर भी मनाया जाता है। आज के दिन मुल्क की तरक्की में इंजीनियरों बिलखसूस विश्वेश्वरैया के रोल को उजागर किया जाता है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने एम विश्वेश्वरैया को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि कौम की तामीर के लिए उनका नजरिया शहरियों को तरगीब देता रहेगा।
2: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके।
3: मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने भी कौम की तामीर में इंजीनियरों के रोल को उजागर करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मौके पर इंजीनियरिंग बरादरी को मुबारकबाद पेश की।

0: है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स का इल्म, जुद्दत, लगन और गरां कदर खदमात मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं और आत्मनिर्भर विकसित भारत के अजम को तकवीत दे रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया को उनके योम पैदाइश पर खराज अकीदत भी पेश किया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इंजीनियरों के कौमी दिन के मौके पर इंजीनियर बरादरी को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने इंजीनियरों को कौम का मेमार करार देते हुए कहा है कि इंजीनियर जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल को दवाम बख्शने, नीज बुनियादी ढांचे को मुस्तकम करने में अहम रोल अदा करते हैं। दरियासना वजीर आला ने आज चर्च लेन सोनवार श्रीनगर में द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के गेस्ट हाउस आईईआई घर का इफ्तिताह किया। वजीराला बर्नहाल स्कूल का एक वक्त आज श्रीनगर में उसके प्रिंसिपल फादर स्टालिन राज की कयादत में वजीराला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुआ और उन्हें स्कूल के कामकाज और वहां के तालीमी मंजरनामे के बारे में जानकारी दी। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा।
1: लोकन हिस्ट्री के लोकन हिंदान टीवी मुखालिफ भारत अभियान सासी यशन टीवी बीमारी हिंस निशानी ताप सीनस दग थक सित खूनियन रोतल अरख मल न रोजन वजन कम गसुन तो बहक तिशी टीवी बीमारी हिंस अलामत टीवी छुन लाइलाज के तमाम सरकारी मरकजन पर छि टीवी बापत टेस्ट इलाज बिल्कुल मुफ्त जानकारी प्रयो नजदीकी हेल्थ सेंटर या टीवी मुक्त भारत अभियान ऐप पे टीवी हारित मुल्क जेल लोक मफातस मजेरी स्टेट ट्यूबरक्लोसिस सेल डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर।
0: वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कंबाइंड कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के जरिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और जम्मू कश्मीर अकाउंट सर्विस के लिए मुंतखब किए गए 55 अफसरों में तकर्रनामे तकसीम किए। इस सिलसिले में आज एसकेआईसीसी श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्द हुई। वजीर आला ने तमाम नव मुंतखब अफसरों को मुबारकबाद देते हुए उनके तहीं नए ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने नए तैनात हुए अफसरों से ताकीद की कि वो अवामी खिदमत, लगन, मेहनत और दयानतदारी के साथ अंजाम दें। बाद में नामा निगारों के साथ बात करते हुए वजीर आला ने कहा,
2: हर साल कुछ अफसर रिटायर होते हैं, कुछ जेकेएएस से आईएएस में चले जाते हैं और एक नया बैच अफसरों का आ जाता है। आज हमने जम्मू कश्मीर हुकूमत में एक नया बैच जेकेएएस और अकाउंट्स गेस्टेड सर्विसेज के अफसर जो है उनका गवर्नमेंट सर्विस में खैर मकदम किया है, इस उम्मीद के साथ कि अब जो आने वाले 20-25-30 साल उनके सर्विस के हैं वो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत में वो वक्त जो है ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाएगा।
0: नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि सरकार लोगों को राहत पहुंचाने और जम्मू कश्मीर के हर खित्ते की यकसा तरक्की की वादाबंद है। ये बात उन्होंने छात्रों किश्तवाड़ में एक अवामी दरबार के दौरान कही। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप सिर्फ आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन, न्यूज ऑन एआईआर, वेव्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म और प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in के अलावा डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरे ऐप या वेबसाइट प्रसार भारती से वाबस्ता या मंजूर शुदा नहीं है। भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन आज अपना 67वां योम तासीस मना रहा है। इस इदारे ने 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के तहत तजुर्बाती बुनियादों पर टेलीविजन खदमात शुरू की थी। यूकम अप्रैल 1976 में इससे ऑल इंडिया रेडियो से अलग करके अलहदा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर बनाया गया। वाजरा है कि दूरदर्शन ने इब्तदा से लेकर आज तक आम लोगों के लिए मालूम, तफरी और तालीम के शोबों में बेमिसाल काम अंजाम दिया है। इसी दौरान दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर ने भी आज अपना 67वां योम तासीस और कौमी इंजीनियर्स डे मनाया। इस सिलसिले में दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्द हुई जिसमें दूरदर्शन और इंजीनियरों के रोल को उजागर किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग एचपी मीना ने कहा कि इंजीनियरों को जदीद ब्रॉडकास्टिंग में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। डायरेक्टर न्यूज आरएनयू डीडीके श्रीनगर काजी सलमान ने भी इंजीनियरों के रोल को उजागर किया। कानून साज असेंबली में हिजब इख्तलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने आइंदा असेंबली इजलास को एक मुख्तसर इजलास करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की नुक्ताचीनी की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने महज 7 दिन के कामकाज का ऐलान किया है जिस दौरान अवामी मसाइल पर बहस तकरीबन नामुमकिन है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सरकार लोगों के सामने जवाबदेह बनने से कतरा रही है। وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ سرکار لوگوں کے مسائل حل کرنے اور اسمبلی کی کارروائی احسن

तरीके पर चलाने के लिए संजीदा है। एसकेआईसीसी श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर आइंदा असेंबली सेशन की मुद्दत से मुतालिक नामा निगारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो जमात असेंबली इजलास की मुद्दत पर सवाल उठाती है उनकी सरकार वाली रियासतों में महज दो दिन के असेंबली इजलास भी मुनक्कद किए जाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हिजब इकदार के सभी अरकान असेंबली पूरे सेशन के दौरान ऐवान में मौजूद रहते हैं। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुलरहीम राथर ने आज श्रीनगर में 21 सितंबर से मुनक्कद होने वाले असेंबली के मौसमी सरमा इजलास के अहसन इनकाद के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। स्पीकर मौसूफ ने अफसरों को हिदायत दी कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करके इजलास को कामयाब बनाए। उन्होंने इंतजाम के हवाले से मुतलिका महकमों के लिए कई हिदायत जारी किए, खासतौर से ट्रांसपोर्टेशन, पार्किंग और दीगर इंतजाम पर सैर हासिल तबादला ख्याल किया गया। दीही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने आज एक मीटिंग के दौरान रफियाबाद हलके में अमलाए जा रहे पीएमजीएसवाई सड़क प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने इन प्रोजेक्टों की तेज तर अमलावरी पर जोर देते हुए कहा कि कामों के मियार को बरकरार रखने के साथ साथ हुकूमत के तसरुफ को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत दीही इलाकों में बुनियादी ढांचे को फरोग देने की वादाबंद है। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने आज पूंछ जिले के कसाब मेंडर में हेलीपैड और वेटिंग लॉन्च की तामीर के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट को यूटी कैपेक्स बजट के तहत तकरीबन साढ़े तीन करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जावेद राणा ने कहा कि मेंडर में हेलीपैड की तामीर पूंछ के लोगों की एक दीर्घ मांग थी। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की राहत रसानी के लिए मुनासिब इकदाम कर रही है। इसी दौरान वजीर मौसूफ ने जिले के मनकोट इलाके में 64 करोड़ 44 लाख रूपये लागत वाले प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इनमें जल शक्ति, ग्राम सड़क, सेहत और दीगर कई शोबों के प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर अमित शर्मा ने जम्मू सूबे के राजौरी जिले में अफसरों की एक मीटिंग तलब करके डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक 2027 की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुर्दमशुमारी एक कौमी फरीजा है जिसको इंतहाई दयानतदारी के साथ मुकम्मल किया जाना चाहिए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा की सदारत में आज जम्मू में पार्टी से वाबस्ता मेंबरान असेंबली की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिस दौरान तंजीमी सरगर्मियों और आइंदा के प्रोग्रामों के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और दीगर कई लीडर भी मौजूद थे। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जमान गिरधारी लाल रैना ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह इजलास के कामयाब इनकाद पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। पार्टी की तर्जमान रजनी सेठी ने नेशनल हेल्थ मिशन मुलाजमीन की हड़ताल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि सरकार को इस बारे में अमली इकदाम करने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज शहरी खास के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि हुकूमत अवामी मसाइल हल करने और बुनियादी सहूलियात को फरोग देने की तरफ खसूसी तवज्जो दे रही है। इसी दौरान पार्टी के तर्जमान आला तनवीर सादिक ने जराए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत यूटी के तमाम इलाकों में मसावी बुनियादों पर तरक्याती अमल को फरोग देने के लिए तमाम तर वसाइल बरोएकार ला रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा बहाल कराने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के स्टेट एग्जीक्यूटिव की एक मीटिंग आज श्रीनगर में पार्टी सदर जीएम शाहीन की सदारत में मुनक्कद हुई, जिसमें पार्टी को निचली सतह पर मजबूत करने और आने वाले पंचायत और शहरी बल्दियाती इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर ने वादी के किसानों को खेतों में उगने वाले नुकसानदेह घास पार्थिनियम हिस्टरोफोर्स के बारे में खबरदार रहने का मशवरा दिया है। यूनिवर्सिटी के साइंसदानों के मुताबिक यह नुकसानदेह घास श्रीनगर के कई खेतों में देखी गई है। साइंसदानों के मुताबिक इस घास को आलमी सतह पर फसलों के लिए काफी नुकसानदेह माना जा रहा है। नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालयों में तदरीसी साल 2027-28 की खातिर नौवीं और ग्यारहवीं जमात के लिए तालिबे इल्म की रजिस्ट्रेशन का ऐलान किया है। नवीं जमात में दाखिले के ख्वाहिशमंद तालिबे इल्म cbseitms.nic.in/2026/nvsi6_9 जबकि ग्यारहवीं जमात में दाखिले के ख्वाहिशमंद तालिबे इल्म cbseitms.nic.in/2026

0: nvsi6_11 पर दरख्वास्त फार्म दाखिल करा सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 मुकर्रर की गई है, जबकि सिलेक्शन टेस्ट 10 अप्रैल 2027 को लिया जाएगा। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकसादी जरायम से मुतलिक विंग की बरवक्त तहकीकात और कार्रवाई के नतीजे में शोपियां में एचडीएफसी बैंक की एक शाख में मुबैना माली बेजाबतगियों से मुतासरा 13 खातादारों को तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए वापस मिल गए हैं। इस मामले में बैंक के साबिक ब्रांच मैनेजर और कई मुलाजमीन समेत 5 अहम मुलजमान को गिरफ्तार किया गया था। तहकीकात मुकम्मल करने के बाद इकसादी जरायम से मुतलिक विंग ने मई 2026 में 11 मुलजमान के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। चिनार कोर के एहतमाम से चिनार प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 जनरल बिपिन रावत स्टेडियम बारामूला में इख्ताम पजीर हुआ। फौज की तरफ से जारी किए गए एक प्रेस बयान में बताया गया कि इस टूर्नामेंट के लिए 130 टीम रजिस्टर किए गए थे, जिनमें से 79 टीमों को मुंतखब किया गया। आज टूर्नामेंट के फाइनल में सुल्तान वारियर्स बारामूला ने रमजी स्पोर्ट्स श्रीनगर को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर दी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और फौज के डैगर डिवीजन के जीओसी और कई दीगर अफसर मौजूद थे। और अब मौसम से मुतलिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.8 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:14 और गुरुबे आफ्ताब शाम 6:36 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा, हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।
1: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं सुहेल भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। हाल ही में मंजर आम पर आए एक सर्वे के मुताबिक मुल्क के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के जुमरे में हवा के मयार के एतबार से श्रीनगर 2023 के मुकाबले में तेजी से लुढ़क कर 26वें मकाम पर आ गया है। 2023 के इसी तरह के सर्वे में श्रीनगर शहर मुल्क के उन पहले 4 शहरों में शामिल था जहां हवा की क्वालिटी सबसे अच्छी थी। गो के बदलते हुए तरीकेकार के तहत इस जुमरे के शहरों के हवा की रैंकिंग में आलूदगी रोकने के लिए किए जा रहे इकदाम को ज्यादा अहमियत दी गई है। ताहम हर एतबार से श्रीनगर शहर का इस मामले में इस कदर नीचे गिर जाना बायस तशवीश है। हुक्काम और आवाम दोनों के लिए इस सर्वे से एक ऐसा चैलेंज उभरा है जिसे निमटने के लिए एक जामे और संजीदा अमली मनसूबे की सख्त जरूरत है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के तरीकेकार, सड़कों से उठने वाली धूल से निमटने के इकदाम और गाड़ियों के एमिशन को कम करने के लिए किए जा रहे इकदाम को खास अहमियत दी गई है। सर्वे से जाहिर होता है कि श्रीनगर शहर इन तीन मामलों में कोशिशों के ताल्लुक से बहुत निचले पायदान पर पाया गया है। एक ऐसा शहर जो अपने साफ शफाफ आब हवा के लिए न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में खास शोहरत रखता आया है, कि जमीन में सर्वे के नतज इंतहाई अफसोसनाक है। ये तस्वर करना भी भयानक है कि अब शहरी श्रीनगर में हवा का मैार दिल्ली जैसे शहरों के हवा के मैार के बराबर होने लगा है, जहां हवा की आलूदगी सबसे ज्यादा है। गौर से देखा जाए कि हमारे शहर में बेहंगम निजी और सरकारी तामीराती सरगर्मियों की बरमार, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जामिया साइंसी तरीकेकार की अदम मौजूदगी और फॉल पब्लिक ट्रांसपोर्ट निजाम के बजाय निजी गाड़ियों पर हद से ज्यादा इनसार ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से हवा के मैार में तेजी से अबतरी रोनुमा हो रही है। हालिया 30 से 35 वर्षों में हुक्मरानी की गैर असर पजीरी, शहरी बल्दियाती इदारों की नाकस कारकर्दगी, तामीरात के ताल्लुक से जवाबत की अदम पासदारी और तरक्याती मनसूबों की गैर मरबूत अमल आवरी इस बहरान के बड़े अनासिर हैं। देखा यह जा रहा है कि हर सू फैलती हुई शहरी श्रीनगर की बस्तियों में पौधों और सब्जारों के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। आम लोगों की तरफ से भी ऐसा तर्ज जिंदगी इख्तियार किया गया है जो कतई माहौल मुवाफिक नहीं। ये सारी सूरत हाल तकाजा करती है कि इस्लाही अहवाल के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाए। 20वीं सदी के अवायल में मुल्क के दीगर इलाकों बल्कि दीगर मुल्कों में सांस की तकलीफ में मुबतला लोग कश्मीर आकर यहां की ताजा हवा से लुत्फ अंदोज होते थे और सेहतयाब भी। सितम जरीफी यह है कि अब यहां बच्चों और बुजुर्गों समेत कई जुमरों के लोगों को हवा की बढ़ती आलूदगी की बोझ से निजाम तनफुस की बढ़ती बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हवा

जय हिंद। फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम सुनने वाले सभी सामयीन को हमारी ओर से प्यार भरा आदाब। सामयीन, आज के इस प्रोग्राम में आप चंद उर्दू गजलें सुनेंगे। लीजिए सुनते हैं प्रोग्राम का आगाज बेगम अख्तर के इस गजल से, बोल है शकील बदायूनी के।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को, ये गजल कलाम जावेद अख्तर की थी। ये सुनते हैं मेहदी हसन और सलमा आवा की आवाज़ों में ये गजल।

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका।
1: वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी तफसील भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
1: क्या?
3: ऐसे पॉपअप से होशियार रहो, स्कैमर्स जाती तफसीलात का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: ओ
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
1: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कर पाते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
1: कूल रहो।
4: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
5: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
4: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
5: तो फिर सही नंबर,
4: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
5: आपने तो बचा लिया दीदी।
4: काम से नहीं।
6: RBI कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्स, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्स के अलावा एफएम चैनल 100.1 MHz पर ये आकाशवाणी करगिल है। खबरों का वक्त हुआ चाहता है अब हम आकाश

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य, लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रूपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहां भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहां हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता।
0: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह

0: सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये दसवां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि एक ऐतिहासिक समझौता है।
1: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
2: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपये से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली एमडीआर लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए एमडीआर की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 43 अरब 81 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर 26.86 अरब डॉलर पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉ सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
5: We need to develop sports infrastructure.
6: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
5: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
0: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और नीट प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
7: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं।

0: तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर कर रहे हैं और नीट क्लियर कर रहे हैं वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नए चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने एचआईवी एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रूपये पर बंद हुआ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया लोगों से व्यापारियों को 2,000 रूपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा

0: Finance Ministry clarifies charges of 0.4% to be levied on person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupee will be paid by merchants. No charges on person-to-person transactions. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। भारत ने कहा है कि भारत चीन ताल्लुकात से मुताल्लिक अहम तश्वीश के सिलसिले में बाहमी एहतराम, दिलचस्पी और हसासियत रहनुमा उसूल होने चाहिए। भारत ने कहा है कि खलीजी खित्ते में तिजारती बहरी जहाजों और मल्लाहों को निशाना बनाया जाना नाकाबिल कबूल है। उसने बहरे अहमर में बढ़ती कशीदगी पर तश्वीश जाहिर की। वजारत खजाना ने वजाहत की है कि किसी शख्स से कारोबारी के लिए 2,000 रूपये से ज्यादा के यूपीआई लेन देन पर 0.04% चार्ज लगेगा जो कारोबारी अदा करेंगे। किसी शख्स से किसी शख्स को किए जाने वाले लेन देन पर कोई चार्ज नहीं होगा। सऊदी अरब ने हौसी हमले की कयास आराइयों के दरमियान मक्का में वार्निंग जारी की है। और मर्दों के क्रिकेट में दिल्ली में मेजबान अफगानिस्तान और भारत के दरमियान दूसरा T20 बैन अलावामी मैच खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वजारत खारजा ने कहा है कि हाल ही में नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजीर आजम ने भारत की तशवीश का हवाला दिया और इस बात को उजागर किया कि तरफेन को एक दूसरे की बुनियादी तशवीश के सिलसिले में हसासियत का मुजाहरा करना चाहिए।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत बहरे अहमर खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर गहरी तश्वीश रखता है। भारत ने सिविल बुनियादी ढांचे और इक्तिसादी असासों समेत सऊदी इकतदार आला पर हमलों की मजम्मत की है। जनाब जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं और आबनाए बाबुल मंदीप के जरिए आजादाना जहाजरानी के लिए खतरा है। ओमान के साहिल के नजदीक तिजारती बहरी जहाज MT अलगैया पर हमले के सिलसिले में एक सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि खित्ते में कमर्शियल जहाजरानी, मल्लाहों, शहरियों और सिविलियन बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाना भारत के लिए नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान की जानिब से जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रूपये के इनाम के ऐलान के बारे में पूछे जाने पर जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से इस तरह का फरेब और हरकतें भारत के लिए नई नहीं है क्योंकि भारत ने माजी में भी ये सब देखा है।
2: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहां हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
1: जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को ऐसे ऐलानात करने के बजाय जिनका आखिरकार कोई नतीजा नहीं निकलता ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। वजारत खजाना ने आज ये वाजे किया कि दो अफराद के दरमियान होने वाले किसी भी निजी यूपीआई लेन देन पर कोई इजाफी चार्जेस नहीं लगेंगे चाहे रकम कितनी भी हो। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि छोटे कारोबारियों की जानिब से यूपीआई के इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर मखसूस फंड कायम किया जाएगा जिसमें MDR की मजमूई वसूलियाबियों का 5% हिस्सा होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजारत खजाना ने कहा है कि सिर्फ ग्राहक और कारोबारी के दरमियान 2,000 रूपये मालियत से ज्यादा के यूपीआई लेन देन पर चार्जेस लगेंगे। वजारत ने कहा कि यूपीआई एप्स को प्लेटफॉर्म फीस या छुपे चार्जेस आयद करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। वजारत ने कहा है कि बैंकों को मशवरा दिया गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कारोबारी अफराद यूपीआई अदायगियों के मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR चार्जेस सारिफिन पर आयद न करें। 2,000 रूपये से ज्यादा के ग्राहक और दुकानदार के दरमियान होने वाले लेन देन पर 0.04% की मामूली MDR रकम जबकि 75,000 रूपये या उससे ज्यादा की रकम पर ज्यादा से ज्यादा 300 रूपये फी लेन

0: आणि आकाशवाणी रेडिओ कारगिल ज्या सिना पुनर्प्रोग्राम मे ज्या तुम्ही शार बिल को बेसु उजुत नजू तो हाजी रेफ साहब अनु वक्स असनो अनु थो मिल शरो है जो शरो अचे हूँ तो शरो असने असनो अलाके जा शरो अचुन तो एक वालो छम बोय शरो अचुन तो कनी कनी क्रोमी असने बिन अले मे जा असोईते खास कर के तो शरो अचुन तो योन रे जेक बेसु स्टाकिंग थोनो जरूरी बेनी तो मैं जो असली कनी सा पेक जा अनुशरो थो जा असने से जिंदगी थे वही नले से सुबारा जा तुसु रजीब होता
1: या बुड़ जो मैं जे इब्राहिम साहब मुस्तुर उजू थमोस आलेना रेडियो रे उजू थमोस की थोमो आने असने श्रीन जारो ससमालार रे शरो करे जो क्रोमे नले तरो तो शरो तो योन रे जो इंतजाम तरे से बारे जा चाह मुल्क थोड़ी मो आई दावत दा से सुकारियो मुस्त तमाम आल रेडियो रेडियो रेगा तुरे उजू थमोस इब्राहिम साहब शरो लगभग आज 16 बिल तो लगभग असने साहब जब 25 दिन एक शरो ये शरे यकुर में जो बदल जो खास कर असने खास रहे तो को तो खाली गम मेजे में ना बान गम मेजे में नहीं लेकिन असनी टेम का असने शरे या तकरीबन तकरीबन 12 या 10 सितंबर करने तो असने ले चिन्ह बनने लिए सो जमाने या तक खाली तो 15 अक्टूबर करने में रहे लेकिन नमजा का अकाल का मौसमों हालात बदले हिसाब से जा को तो खाली गा एले भी ले तो कोतवाल बगैर जो तकरीबन वालो सूर्य चार पोच दाई हैं तू खाली का फरी छम थे ना
0: सही
1: के तो मोरा आनी बजाम मजाम मोर था कि शरो युक्त न ले शरो में जासने ले जितनल ता तो सारे इतना ले ता तो टाप इतना ले ता तो सिरे इतना ले दोनों खाली पर होनी से कोई दो ना ले कम मशीन मशीन सिस्टम ना असली दो ने गाने ना ले चल तो होते ना तकरीबन तकरीबन असली कासरे घूम खाली तो से कोई थोक गबड़ो बेलो लेकिन फसने भी थुक लेगी बड़ो बे तो थोक क्राप थी उन्हें तो विन खे मैंने यानी तकरीबन मामली उम्र है जब 70-80 साल एक बिल्मी तकरीबन उम्र तो मचाक उम्र बड़ो करने भी लोस
0: सही जो
1: ता तो होते जा तो असने उम्र है पशे ता तो टाप हुई नले मुला जैसे कोनी चुए लाव है तो सुसेरे छिले बोनी ने तो टाप पढ़ने थे लिए ता तो खरी रेवनल शोंती विनाले सदा आज पिचार पोजे दो ने सात आज तक दाए गाने ने तो असनों गुम पिशी ने पिशे लो
0: सही जो
1: तो को तो खैर टेक्नोलॉजी का आली जमाने का बदलत भी लो तो खुदाई नियामत गला इलाही शुक्र आली तो को तो मशीन का फाली हर चीज मशीन हो तो तमाम बुरी खत्म थफत थे ना बाने बोनी काचे बोनी लेचे बोनी ता तो शरो शाम जब ब्याय बोनी एक तो पार इंतजाम भेज नहीं यानी बावजूद पार खलना तो यक मतलब जो कथनल बेकार ने बेत तो गिदी लोर बोई नले गिदी ले थाना जी ब्याह हो आ गिदी लोर खड़ा तो सगी फस के लास्ट तक करे ही प्रेन ले से करे ही प्रेन तो ता तो भटिया राव से भटिया रे लो लाई तो रे या गोयार गा राव कर कहीं नहीं प्रेन ले बड़ा कारोबार काट वाट वाली उन्हें करे ही प्रेन ले मुझे कह जाक से छाने के भाई फास के लास्ट है वी
0: सो गानू टेम है जो शरू
1: सो गानू शरू टेम है खाली वाली चाप बोई गिदी ले खाटे ना ले सुमे जा पचे थे तो पचे थे खाटे ना ले सा पाट टका तो फर्स्ट क्लास समझ जानकारी असली को तो करे थोबे निश पर आपको तो करे हो सामान का निश्चित कड़ा रहेगी अता रो कोई तो कमाम फर्स्ट क्लास तक करे ही प्रेरण ले तब से करे ही फल छोड़ना ले शिक्षा बोनी से शुका बोलता तो असने शरो पार खेल टे मेरी सोनी पार ले कि गरीब से गरीब हाउ से का बड़ो बाग ओकीत पर जिसनी कोई टिपोस पार खेल लो
0: बिल्कुल
1: को तो पार
0: से कोनी माल दौलत बेली रे जो लाल
1: छाल बेली को तो आई छक्सा खयन बोलो सा तो बाथरूम में पे कमोडी पे तमाम वो इस्तेमाल ने तो निश
0: तब को तो असनी बायो जो फरक बनो वजह बिल रे जो के क्यों तो बेसुकुत अनी सरकारी पार एने कानी केमिकल पार एने आया थोसी बक इस्तेमाल थोना से असनी अनी फसले का काफी फरक बोई बो जोंगलो जो
1: इब्राहिम साहब को तो तमाम बुरी केमिकल बिली मैं जे अकनी पार देना अकनी लोकल बाई बेली बल्कि दुनिया तो खबर है असनो चेरे मतलब दूध कमी बिल तो गा असनी एक्टी की तो गा दूध भी फड़ बेलो आम जक्स थे ना दूध हुए हमारा दूध असली बथरा सुलो निरकूल और बोझो ये कि दूध एक कोई सी बुझा लो सारे चमारे गए जो जूरी तेरे गा टाइटी के तो पूरा दूध बहुत दूध भी फड़ बेलो यानी सुखने आओ गुम या आता का तसली को तो कुराजन ने बेम सुखने गुम असने अच्छे फड़ से ले अच्छे फसले फड़ फसले यानी पेजोनी के तो जो एक एक कुल काफी मकदार है या आटे खजना ले
0: बिल्कुल बिल्कुल तो पार बदौलत बिल्डे जो लोकल पार

0: paro badulat bilko to kim nikala adet pokod no formality den don mish khali cheda ches ba ne cheda ches kachi leda le ne tum manish sharo tema ya miju ke jare se aap ithe ta sharo kaat wal na le
1: sahi yono ka yono ka jo
0: sharo ge wal na le
1: sahi
0: ko to bes thuna je wala kaatne phal da kashiru kaatne wale da ko to inni ka shukr ye bhi khuda ki ek niamat mila so inte ki kaat walo ni pele boni gino ni माँ असने डिमो यही असने मुलाए बोनी बाल बोनी काट वाल नले से उन काट हुए आकर लो भी अंदा थना ले लो भी उनका थना ले
1: लो यूनो
0: लो भी उन्हें गांडा था
1: लो यूनो यानी काट थोशाई
0: थोशाई जमा था खाली कोरने वजह नहीं अधिक बया तो लो यूनी
1: अच्छे से शुरू शुरू ना जाती
0: ता तो वाले तो काट वाल नले से के जो क्या आज पे के का वजह आज पे वाले लो बाकी आम मुलाए बिल चल लो उस तो बोझ नले बाल बोझ नले वाले काटे शरे हिंसुल बीज तो ता तो काट फोटो से एज के सुन नले से हिसाब यासनो कर बता तो यौन उससे बड़ी था तो तू नो यौन इंतजाम था दब क्यों थे सिर सिरा सिर भैया कनुगा टेमो सिर सिरा
1: यान अनु अनु शरो टेम आओ असलो थी रजनी की मतलब यौन रे बेसु स्टॉकिंग थियोनो कनी अवजो नहीं काट अवजो न हो तो का कश अवजो न हो तो ग्रुप अवजो न हो तो का अनु टेम में जैसे स्टॉकिंग थियो तो लोस्ट यौन रे कोई चीज प्रॉब्लम ना ले
0: रे अगर तो इंजाम ने था तो यौन का ही फसी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: काट बोनी काट बोनी ग्रुप बोनी बाई बोनी तमाम पूरी यानी सिलाए माची माची तो नहीं जा आज एक डग इंजाम थे जिन्हें रो नुस्त अच्छा खेलने के कोन मुझे बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सो अच्छा नियामत है अच्छा को सिलेते के नासिले अच्छा
1: को श्रम हो जो कार्य जो बुडो
0: अच्छा गाड़ी वाड़ी को ट्रांसपोर्ट के सिलेन नासिले या बो तो तमाम यौन इंजाम बो तो यौन रो नियामत खतरो बाकी दीजिए खुदा आते जा बीमारी खुदा आते जा तो उससे उन्हें अता से उन्हें बीमारी आएगा खुदा बीमारी आएगी एक शलवा को तो चावला से खबर को तो कौन कहाँ है कौन कहाँ निश्चित पता भी नहीं
1: बिल्कुल
0: बख्शी जी
1: तो रजब साहब एक मिनट रुझू की तो अनी खाली वाली छप था तो को फैर रहे जो असोई लेने मशीन फैर रहे पेजो न करो तो उससे खुद में कहीं हिसाब के पेड़ ना
0: तो अनुमा सवाल असली सवाल था जो के तो असने यूं तो तुरु खबर मोर खबर तमाम असने कागिल डिस्ट्रिक्ट और लगभग खबर आई खासकर छह इलाकों तो खबर आई पर वो चाहूं वो यो ठंडा बोले तो असने से इधर गली थना सुन गली
1: सही
0: गली हर नले मतलब गली जो खाना था आई गुम पेजे जल चेंगुला या आ हर नले चल लो उस तो इधर गली हर नले पर रा जो पेजे पर वो गली और तर नले यो रहेगा उसमें बारी असली
1: सही
0: यो रहे चेदे चार असली बारी असली ता तो मिशारी क्यों रे पे नले आठ क्यों रे पे नले ता तो लास्ट तो दुरुम हुई नले कि इस दुरुम का जरूरी गिजा सुलो
1: बिल्कुल
0: जरूरी खोरा गसली यारो खोर रे जवान रे छलबाग बिल तो शीर्ष जिला तो एक बिल तो दुर्मुख खुद की जवात है से तती बेली से गरम बेली खुल की तो गजार ली तो खुदा से शफा तो थे उसे से
1: बिल्कुल
0: से उन्हें यौन रे लगभग ऐसे यौन के हिसाब में तुम नवाज नहीं लिया
1: अनशारो आखिरी कह रहे
0: हरी शरो में लगभग पतलू मोज गए हरी द तो लास्ट सूरी सच नल खुरो जा वही वही सूर फोड़ना फोड़ना ले मुझे जा रहे से खरिया गाय सूरी सची रे से जाता है ताया से ली
1: बिल्कुल यानी कि नोम दे पातो रह छोड़ना ले जो चाय
0: नोम दे नोम दे चाय वालों से आठ मिश्ट बनाते
1: अच्छा अच्छा
0: आठ जिम उन्हें भाई आठ मिश्ट बनाते तो नोम दे पातो रह छोड़ना ले चाय इतने छोड़ना ले को तो मिशन
1: मिशन ने फल लाती हूँ
0: ताते ताते बोरे आरो फल थोनस तातो ताता बोझ चाय चक सोलो ये फल तातो तातो फल न सुसा सोरे सियादे के तो मजीद बीमारी बैठी है सजा को तो कभी हाँ जाने का से या गुम बोझ तो नोको तो बैंक क्रिनोई खानस तनी आठ ओरे मेसू हाउ थोड़ा बेसु शुरू न जे लेकिन आ आटे गाने आटे से कनी तरह सो जिससे पता
1: फर्क नहीं कि तो आन्या मशीन इन पेजे गा परायो जे पेजे आटो जा सक फर्क है बिन ने जो
0: काफी काफी फर्क में नहीं यानी एक किस्म प्लास्टिक भाया प्लास्टिक मत तुर कचाक दारो भी डिमा जा हाँ
1: बिल्कुल
0: युग दारो बोनो सातुवाट बोनो असने आटे बिल असली आटे पिरा आटे बिल रे सब आटे पर जो से मशीन है पायो तो तत्ते बो आदि दये खलिन रे यानी सो सो लज्जत बुरो हाउ सो सो जिम हाउ बुरो आई मशीन खम थे नी तू मत हद दे दा आटे हद जों ताकत बेंदा असने आटे चौ बिना मिठी बेनी से वो जो मिठी बोई तो आरो फरेग ने पन्ना ले तो या हिसाब से जो को शरो के या आगे सुमो इंतजाम थे ना ले
1: बिल्कुल
0: तो को तो सब कुछ असोचे मछा भी आने या ये भी खुदा का शुक्र है नियामत है चलो हाँ जा अल्लाह ताला ये नियामत बिल
1: बिल्कुल बिल्कुल यानी शरो टेमा जा अकिनी स्टाकिंग बोनो चाहे काशो बोनो ग्रुप बोनो सह वो जैसे वक्सा सिर थे छोड़ने लेने ने जो अनुटे में
0: हिन्न वजिस तुम्हें या इंजाम हिन्न वजिस इंजाम मानो हिन्न वा तो तातु दारों ने बना तातु माँ कुछ कुछ में शायद